ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहितारे। गुरबाणी दे तुका सानू दसदिया ने कि अजिहे गुरु तो सद के वारे वारे जाना चाहिए जो आप भी इस माया रूपी संसार तो मुक्त है।

0: जहां माँ का आशीर्वाद होता है वहां हर कठिन राह भी आसान हो जाती है।
1: साचे दरबार।

0: की, जोर से बोलो जय माता की,
1: जय माता की, जय माता की,
2: भक्तों बोलो जय माता की,
1: जय माता की, जय माता की,
0: सारे बोलो
1: जय माता की।

खामोश राहों में तेरा साथ चाहिए, खामोश राहों में तेरा साथ चाहिए, तन्हा है मेरा हाथ तेरा हाथ चाहिए, मुझको मेरे मुकद्दर पर इतना यकीन तो है कि तुझको भी मेरे लब्स मेरी बात चाहिए। गिराकर दर्दे जुदाई की ये सारी दीवारें, गिराकर दर्दे जुदाई की ये सारी दीवारें, बस प्यार भरी एक हंसी मुलाकात चाहिए, खामोश राहों में तेरा साथ चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 102.7 FM रेनबो, 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और नाल दी नाल न्यूज़ ऑन AIR ऐप वाले दोस्तों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, गुड वाली मॉर्निंग जनाब। और स्टूडियो घड़ी ते समां 7:05 और 4 सेकंड हो चुके ने, और संडे वाली खूबसूरत सजरी सवेर रह के थोड़ा दोस्त RJ ललित सोनी हाजिर हो चुके जनाब। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर का आगाज हो चुका है। तो अज की इस सजरी सवेर दे विच बहुत सारिया गल्लां बातां, बहुत सारी इनफॉर्मेशन थोड़े नाल सांझी की जाएगी, और मेरा ते थोड़ा साथ बनया रहेगा ठीक 10 बजे तक, और 8:30 बजे तक तुसी आनंद माणोगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर का। 8:30 बजे होणगियां पंजाबी दे विच खबरां, और 8:40 ते होएगा म्यूजिकली बैक टू बैक दा सफर अड्डी टप्पा, और 9 बजे आगाज होएगा दिल अपना पंजाबी, पंजाब पंजाबी और पंजाबियों दीआं बातां पाउंदा, और पंजाबियों दे दिलां दी धड़कन दिल अपना पंजाबी। सो प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी दे विच वी तुसी शिरकत कर सकते हो। 9855101027 साडा नंबर रहेगा, वट्सएप ते तुसी मैसेज कर सकते हो, अपने लिखे कुछ जज्बात बोल के गा के लिख के सानू भेज सकते हो। जे थोड़े अंदर कोई टैलेंट है, थोड़े अंदर कोई खास प्रतिभा छुपी हुई है, तो तुसी उस खास टैलेंट नू साडे नाल सांझा कर सकते हो। सो फिलहाल अज दी खूबसूरत सजरी सवेर जनाब थानू बुला रही है और थानू जगा रही है। जेडे दोस्त इस वक्त सो रहे ने उन्होंने अज दी सजरी सवेर पंछियों की आवाज़ दे नाल और मिठी मिठी हवा दे नाल जगा रही है, और कह रही है कि अज दा ओ दिन है जिहड़ा थानू पूरे हफ्ते तक जिहदा इंतजार रहिंदा है। 6 दिन तुसी इस दिन का इंतजार करदे हो। ये दिन बहुत सारिया खुशियां, बहुत सारिया उमंगा, बहुत सारे चा लैके आउंदा है, अपणियां नूं मिलाउंदा है, अपणियां नाल गलबात करन दा दिन, संडे वाला दिन, किसी नूं मिलन दा या फिर किसी कोल जाके अपने दिल की गल कहण दा दिन। सो बाकी जिंदगी सफर दे विच किसी ना किसी का साथ होना बहुत जरूरी है, और जिवें मेरा और थोड़ा साथ FM रेनबो और थोड़ा साथ, इस तरह ही साथ सदीवी बनया रहे, और मुहब्बतां दे जिंदगी दे खूबसूरत नगमे असी इदां ही गाते रहिए, और इसी तरह ही जिंदगी नूं चढ़ाया वो आनंद दे नाल माणिए, और जिंदगी का हर एक पल इंजॉय करिए। आओ सुनते हैं इस खूबसूरत गीत नूं, ते इस गीत तो बाद होणगियां प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दे विच होर भी खास गल्लां बातां।

102.7 FM रेनबो 103.6 मेगाहर्ट्ज़ न्यू जोन AIR ऐप बड़े दोस्तों ने एक बार फिर तो प्यार परी सत श्री अकाल जनाब। स्टूडियो कटते 7:26 हो चुके ने। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर का आनंद माण रहे हो तुसी अपने दोस्त ललित दे नाल। मैं क्या जी मौसम के मिजाज की गल करिए मौसम जड़ा लगातार करवट लेंदा जा रहा है और जून का महीना खत्म होने ते आ गया है लेकिन बारिश का जड़ा किते भी नाम निशान नहीं नज़र आ रहा और दिल्ली NCR समेत कई राज्यों विच अज जड़ा सुबेर नू जड़ा धुप निकलन दे आसार दसे जा रहे हैं और शाम 6 बजे तक लोगों नू जड़ा इस गर्मी तो जड़ा निजात नहीं मिलने की चेतावनी जड़ी है दिती गई है, ये खबर दिती गई है मौसम विभाग वालों। और नाल दी नाल मौसम विभाग वालों भी कहा गया है कि हनेरी ते नाल नाल बिजली डिगण की भी चेतावनी जड़ी है दिती गई है। पर मौसम विभाग का पूर्वानुमान कुछ इस तरह कह रहा है कि दिल्ली समेत जड़ा 20 राज्यों दे विच बादल बरसन की संभावना है। सो बाकी देखते हैं कि मौसम अपना करवट किवें बदलता है, बदल बरसते हैं कि नहीं। पर जेकर असी जलंधर की गल करिए इस साल मानसून जड़ा जलंधर दे विच देरी दे नाल पहुंचन की संभावना है और मौसम की इस मानसून की स्लो स्पीड के कारण जड़ा बहुत घट बारिश हो रही है और इस घट बारिश के जड़ा मौसम विभाग के पूर्व अनुमान जड़े लगाए जा रहे थे वो जड़े ने गलत साबित भी हुए ने। और हुण तक पूरे जलंधर के एक बार ही प्री मानसून की बारिश जड़ी हुई है और 26 जून की गल करिए IMD नू जड़ाया कोई पूर्व अनुमान नहीं सी मगर कुछ इलाकों के कहते हैं कि पॉकेट रेन जड़ी हुई है। और मौसम विभाग के अनुसार जड़ी अचानक बारिश हो रही है इहदा सटीक पूर्व अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कदे बदल हो जाते हैं, कदे बदल लंघ जाते हैं, कदे जाते जाते बदल जड़ा वो झमझम बरसात कर जाते हैं।

0: हो सकती हैं।
1: जी मैम, की स्ट्रेस हमेशा माड़ा ही हुंदा है जां कई बार ये सानू अगे वधन दी ताकत भी दिंदा है?
0: देखो स्ट्रेस भी बहुत तरह के होंगे है ते हर वेले माड़े नहीं होंगे है क्योंकि जिवें मैं पहला किया भी स्ट्रेस एक साड़ी बॉडी का रिएक्शन होंदा वे किसी चीज नू जिथे सानू कोई ट्रिगर करे थ्रेट लगे भी बॉडी किवें रिएक्ट करेगी। सो हुण जिवें कई वारी कुछ हद का स्ट्रेस सानू मोटिवेट करन लई भी चाहीदा हुंदा है जिवें अगर सपोज असी एग्जाम की गल करते हैं ते ओ थोड़ा बहुता स्ट्रेस होना ते ओ तुसी देखिया होएगा जो इम्तिहान हुंदा उस तो एक दिन पहला आपां पूरी किताब तैयार कर ली दी है जिहड़ी कि सानू 6 महीने लग जांदे आ पढ़न नू वैसे याद करन। सो थोड़ा बहुता स्ट्रेस बॉडी लई ठीक भी रहिंदा है ते मेंटल एक्टिविटी लई भी ठीक रहिंदा है। सारे स्ट्रेस माड़े नहीं हुंदे।
1: जी मैम, केड़े लक्षण दसदे ने कि हुण तनाव साडी मानसिक सेहत नू प्रभावित कर रहा है?
0: हाँ जी हाँ, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज अजकल जे तुसी किसी छोटे न्याणे नाल भी गल करदे हो बच्चे नाल भी को मैनू बड़ा स्ट्रेस है बट उस स्ट्रेस दा मतलब ये नहीं है भी उन्हू मानसिक कोई प्रॉब्लम हो गई है पर इन्हां दे कुछ लक्षण जिहड़े ज्यादातर रिसर्चेस च पाए गए ने वो हैगा जिवें कंटीन्यूअस हैडेक हुंदे रहना सिर दर्द रहना बहुत चिड़चिड़ापन रहना डाइजेशन दिया प्रॉब्लम जिवें एकदम ही पेट खराब हो जाना या कॉन्स्टिपेशन हो जानी नोजिया हो जाना तुहाडे स्लीप दे विच सडन चेंजेस आ जाने नींद ही नहीं आनी है मूड स्विंग होने फिर तुहाडे सोशल बिहेवियर दे विच चेंज आ जाना भी जिवें तुहानू एकदम ही किसी नू मिलन दा ही नहीं जी करदा तुसी एकदम कटे कटे रहिंदे हो। सो ये कुछ लक्षण हो सकते हैं भी ये तुहाडे मेंटल हेल्थ नू अफेक्ट कर रहे हैं।
1: जी मैम, एक होर सवाल है कि मोबाइल फोन अते सोशल मीडिया दी ज्यादा वरतों भी स्ट्रेस दे वधन दा कारण है?
0: जी बिल्कुल हैगा ते ए हुन अगेन डिपेंड करदा है भी आपां ज्यादा किन्नू यूज कहने हैगे आ ते जदों इन्ना क हो जाए भी तुहानू फोन छड्डिया भी तुहाडे तों रहा ना जाए फोन मिले ना ते तुसी इन्ने घबराहट होण लग पे कि जिवें भी सह नहीं आ रहा बंदे नू इस तरह की घबराहट हो रही है ओदा मतलब है कि कोई ज्यादा एक्सट्रीम क्लिनिकल साइड वल ओदा मिसयूज हो रहा है सोशल मीडिया का क्योंकि प्रॉब्लम यह होंगी है भी जो आपां सोशल मीडिया की एक्सट्रीम यूजेज कहने हैं तो असी जरा फेस टू फेस इंटरैक्शन परसनल टच कितने ना कितने रह जाता है तो वह फिर स्ट्रेस नू मल्टीप्लाई कर सकता है।
1: जी मैम, ये जिवें हुण असीं देखदे हां वी इह सोशल मीडिया की वरतों जिहड़ा खास करके नौजवान पीढ़ी जिहड़ी आ सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा वरतों कर रही है सो इस चीज़ नूं किवें रोकिया जा सकदा है तां जो उहनां दा स्ट्रेस लैवल जिहड़ा आ उह घटाया जा सके?
0: जी देखो इहदे विच इक तां जिहड़ा मेंटल सैट अपना चेंज करना पैंदा है इक तां जिवें देखो किसी चीज़ दा स्ट्रेस है एंगजाइटी है इक तां आपां कहने आ भी उहनूं साइकल नूं ब्रेक करो बाय कामिंग योर नर्वस सिस्टम मतलब तुसीं अपने अंदरूनी कुछ चेंजेस कुछ फोकस चेंज करन दी कोशिश करो जिवें दी हुण अजकल असीं काफी रिसर्च हो रही है जिहदा ते आपां कह रहे हां कि तुसीं एक जो भी स्ट्रेस दी है जो जिवें सोशल मीडिया तुहानू इन्ना ज्यादा तंग कर रहा है थोड़ी क देर अपना ब्रेकिंग पीरियड लो कि भी मैं इन्नी देर तक नहीं हाथ लाना हैगा या भी जिवें रात सोन वेले मैं नहीं करना उन्होंने डील करन लई तुसीं जिवें ब्रीदिंग दी एक्सरसाइजेज है अपने नर्वस सिस्टम कूल डाउन करन लई तुसीं योगा कर सकते हो मेडिटेशन है या एक्सरसाइज है या किसी होर चीज ना तुसीं इवन अपने दोस्त मित्रां नाल गलबात जिहड़ी फोन नू छड़ के फेस टू फेस करो अपने फैमिली दे नाल टाइम स्पेंड करो ते आ चीज़ां नाल तुहाडा स्ट्रेस ते एंजाइटी कुछ हद तक घट हो सकदी।
1: जी मैम, जी घर जां समाज दे विच कोई अजिहा व्यक्ति है जो कि तनाव या चिंता दा शिकार है तां परिवार नू समाज नू एक आम नागरिक नू उस दे नाल किहो जिहा व्यवहार करना चाहीदा है?
0: जी ए ना देखो इस तरह जिवें मैं कहा भी आपां बहुत ज्यादा ना डिपेंडेंट हो गए हां अपने सोशल मीडिया ते या जिहड़ी किसी दा सिरा तुसी मतलब नेट दे उत्ते जो इनफॉर्मेशन मिलती है वो कर लो ओदे नाल की है कि असी फैमिली दे विच रिलेशंस नू बहुत उपरले ढंग दे विच रख लिया जिथे असी दिल दी खोल के गल करन जोगे भी नहीं रहिंदे बट अगर कोई एहो जिहा व्यक्ति जिहड़ा इस तरह दी प्रॉब्लम नाल जूझ रहा है ते ओनू तुसी गलबात दे नाल ओनू ओदी प्रॉब्लम समझन दी कोशिश करो एंगेज करो ओनू प्रॉब्लम ओदी हल

अपने रेडियो सेट की आवाज थोड़ी जी चक दो क्योंकि जनाब पैन लगा है रोला रप्पा क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है अड्डी टप्पा। सो बैक टू बैक पंजाबी गीतों का आनंद माणोगे ठीक 9 बजे तक और 9 बजे आगाज होएगा थोड़े और मेरे सब दे फेवरेट वाले प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी दा। चंगा लिखते हो चंगा गाँव हो या फिर किसी का लिखा गीत कविता नज़म शायरी पोएट्री थानू बेहद पसंद है तो तुम उस दिन चंद लाइना बोल के गा के लिख के सानू भेज सकते हो या फिर कोई थोड़े कोल पंजाबी विरसे दी बुकल दे विच सांभियां हुई कोई यादा कोई इतिहास नाल संबंधित थोड़ी कोई खास याद है या फिर थोड़े कोई पिंड दे विच थोड़े इलाके दे विच कोई इतिहासिक जगह है तुसी उसका इतिहास साढ़े नाल साझा कर सकते हो और जेकर तुसी दिमागी कसरत कराने वाली कोई थोड़े कोल बुजारत है तुसी वह भी साढ़े नाल साझी कर सकते हो और जेकर तुसी चाहते हो कि थोड़े आवाज़ दे नाल साढ़े दोस्त हसन मुस्कुराउण तां तुसी वह हसदा होया मुस्कुराउंदा होया चुटकला साढ़े नाल साझा कर सकते हो और खासकर जिहड़े दोस्त इस प्रोग्राम दे विच बहुत देर बाद हाजिरी लगाते हैं उन्होंने बेनती है कि इस प्रोग्राम दे विच जरूर आप भी हाजिरी लगाया करो और अपने होरना दोस्तां सज्जना मित्रां नूं इस प्रोग्राम दे बारे दस्या करो तां जो इस प्रोग्राम दे विच होर भी सज्जन मित्र प्रोग्राम दे विच शामिल हो सकन और प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी दा जिहड़ा समा उहदे बारे जिहड़ा आ उहदा वधाउण दे बारे जिहड़ी असीं कुछ उपराला कर सकते हैं। सो ये सब कुछ थोड़े सहयोग के नाल ही हो सकता है जेकर तुसीं वध तों वध प्रोग्राम दे विच शमूलियत करदे हो प्रोग्राम दे विच शामिल हुंदे हो ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੱਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्स, डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा, डीआरएम 864 किलो हर्ट्स, 100.6 मेगाहर्ट्स विविध भारती, 103.6 मेगाहर्ट्स अमृतसर, 100.9 मेगाहर्ट्स अते 100.8 मेगाहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुण तो थोड़ी देर बाद मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देशवासियों लई प्रसारण मन की बात साढ़े दिल्ली केंद्र तो प्रसारित किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति

0: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम,
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया।

इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की ये ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपये का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती।

और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है, ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे, कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हर गिला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हर गिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने

लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हर गिला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हर गिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचा

बनाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है

उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज, रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है, इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। यह हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे। लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है, कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल

0: रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो, वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं, वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले, तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है। बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से

एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से समा हो चुकी है जी एफएम न्यूज हेडलाइंस दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सेशल्स दे राष्ट्रपति पैट्रिक हरमायनी नाल गलबात करनगे। श्री मोदी सेशल्स दे राष्ट्रपति असेंबली नूं संबोधन भी करनगे। प्रधानमंत्री ने अज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम विच देश विदेश दे लोकां नूं अपने विचार सांझे कीते ने। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकां नूं उदों तक कैलाश मानसरोवर यात्रा ना करन लई कहा है जदों तक उन्हां दे सारे जरूरी यात्रा दस्तावेज पूरे नहीं हुंदे। तीन जुलाई नूं शुरू होण वाली सालाना अमरनाथ दी यात्रा तो पहलां सुरक्षा एजेंसियां वल्लों जम्मू कश्मीर विच एक व्यापक बहुपदरी सुरक्षा अभ्यास मुकम्मल। श्रद्धालुआं दा यात्री बेस कैंप विच पहुंचना शुरू हो गया है। अमरीकी फौज ने लगातार दूजे दिन कई ईरानी टिकाणिया ते हमले किए ने। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम दे अगले पड़ा सूरमा मुहिम की शुरुआत। नशा छड़ चुके नौजवान होरना लोगों नू नशा छुड़ाउण दी मदद करनगे। पंजाब दे राजपाल अते चंडीगढ़ दे प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने नशियां दी दुरवरतों अते गैर कानूनी तस्करी नू खत्म करन लई एक सांझी समाजिक लहर दा सद्दा दिता है। पंजाब सरकार वल्लों अज सरकारी कालज स्टेडियम गुरदासपुर विखे कराए जा रहे एक शाम भगवान शिव दे नाम प्रोग्राम च मशहूर गायक हंसराज रघुवंशी भगवान शिव दा गुणगान करनगे। प्रोग्राम शामी करीब 6 बजे शुरू होवेगा। भारत दे किताबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप विच मर्दां दे सिंगल्स दे फाइनल्स विच पहुंच गए ने। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਐਫ ਐਮ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਜ਼।

बसंती को समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालों, अब मैं जा रहा हूँ।

छुआ जो मैंने एक फूल गुलाब का, छुआ जो मैंने अचानक से एक फूल गुलाब का, सारे बहार में तेरी खुशबू आने लगी, सारी फिजाओं में तेरी खुशबू आने लगी। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से प्रोग्राम चल रहा है जी, मिड डे मेलोडीज, और ये गीत जरा तुसे इंजॉय किया है जी अलका याग्निक एंड कुमार सानू की आवाज़ दे विच, प्यार में दिल दे दिया। हाँ, क्योंकि इस प्रोग्राम दे विच ये गीत जड़े ने बहुत ही प्यार और उन अफसानियां नू दोहराउंदे ने जिन्हां नू असी याद करते रहने हैं, जो गुनगुनाए ने लता मंगेशकर, किशोर कुमार जी होना ने, अनुराधा पौड़वाल ने, अलका याग्निक एंड कुमार सानू जी ने। सो अगला गीत है, तुम आ गए हो नूर आ गया है।

तेरी मुस्कान से दिल धड़क जाए, तेरी यादों से रूह महक जाए। ऐ दोस्त तेरी मुस्कान से दिल धड़क जाए, तेरी यादों से रूह महक जाए। तुझ बिन हर पल लगता है अधूरा सा, तुझ बिन हर पल लगता सा अधूरा सा। तू साथ हो तो जैसे जहां तू जाए, वहीं हर जगह हर समा रुक जाए। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज। ये प्यार भरा सफ़र आपका और हमारा बना हुआ है एफएम रेनबो यानी कि आकाशवाणी जलंधर के साथ। इसको एंजॉय करते हैं और इन गीतों की बहार को, इन गुलदस्तों को महकते हुए, गुनगुनाते हुए सुनते हैं।

बस तू इतनी सी मोहब्बत निभा दे, ऐ मेरे प्यारे दोस्त, बस तू इतनी सी मोहब्बत निभा दे कि जब मैं रूठूं तो मुझे मना ले। वाकई जी कई बार रिश्तियां दे विच कुछ एहो जे ताने बाने होंदे ने, कदी कोई रुठ जावे तो दूजे नूं मना लेना चाहिए, ते जेकर किसी को गलती हो गई होवे ते दूसरे नूं उस दी गलती नूं माफ़ कर देना चाहिए। बस समझण दी गल है, बस थोड़ा जिहा समझण दा हेर फेर हुंदा है। जेकर ये जिहड़ी है समझ लग जाए तो फिर सारे रिश्ते जिहड़े जल्दी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते लता मंगेशकर दी आवाज़ दे विच अगला गीत फिल्म घर, जो कि 1978 दे विच बनी सी, तेरे बिन जिया जाए कैसे है।

0: उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। अपनी पलकों पे सजाए हुए यादों के दिए, उसकी नींदों से गुजर जाने को जी चाहता है। बहुत ही लाजवाब कविता सरनल सांझी कर रहे ने राम स्वरूप अरोड़ा चौंक चेलियाँ सुल्तानपुर लोधी तो। बलविंदर सराम पिंड मोरजंड सिखा हनुमा गुड़ तो लिखते ने कि महक अपने रिश्ते की फूलों से भी गहरी है, इसलिए तो अपनी मोहब्बत सांसों पे ठहरी है। ना टूटे ये सांसों का रिश्ता जिंदगी से, वरना समझेगी दुनिया में हर मोहब्बत अधूरी है। सवरन सिंह पिंड दौलेवाला जिला मोगा तो एक शेर साढ़े नाल सांझा करते ने लिखते ने कि दिल लगाउण तो पहला मैं शायर नहीं सी, तेरे ठुकराउण तो पहला मैं शायर नहीं सी, तेरे हिजर ने सिखा दित्ती मैनू शायरी, कलम उठाउण तो पहला मैं शायर नहीं सी, कलम उठाउण तो पहला मैं शायर नहीं सी। बहुत ही बाखूब कवितावां शेर नज़मां साढ़े नाल साढ़े जिहड़े दोस्त ने लिसनर्स ने सांझियां कर रहे ने। ते जे तुसीं वी साढ़े नाल कोई नज़म कोई कविता कोई शेर व शायरी सांझी करना चाहते हो तो तुसीं कर सकते हो साढ़े वट्सएप नंबर ते टैक्सट मैसेज करके। साढ़ा वट्सएप नंबर हैगा है जी 9855102017।
1: जी ने एक और आपकी फरमाइश है वो सब होगी इंशाल्लाह। तो ये आपकी बड़ी पहले से फरमाइश आई हुई है, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सारा है।

देखकर मुस्कुराती है पर बात नहीं करती, देखकर मुस्कुराती है पर बात नहीं करती, उफ़ तेरी तस्वीर के तुझसे भी ज़्यादा नखरे हैं। प्रोग्राम तो इंजॉय कर रही हूँ, दिलाचार है अपनी दोस्त होस्ट आज जी रिया दे नाल। तो बहुत सारे दोस्त साढ़े नाल जुड़े हुए ने, बहुत सोहनियाँ सोहनियाँ शायरियाँ साढ़े नाल सांझियाँ कर रहे ने। इकबाल सिंह अमृतसर तो ने, जो वो एक शेर साढ़े नाल साझा करते ने, लिखते ने कि तुम्हारी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है, तुम्हारी मुस्कान पर अपना सब कुछ लुटाने को जी चाहता है। सुभाष चंद्र वत्स गिद्दड़बाहा तो लिखते ने कि लोगों की इस भीड़ को कुछ रुक के तो देखो, इस भीड़ में पहचानने से चेहरे भी मिलेंगे, राहों में अंधेरा है तो उम्मीद भी रखो, इन राहों में जुगनू कहीं ठहरे भी मिलेंगे। ते गलबात इदा ही है कि आज दा जिहड़ा प्रोग्राम है ना, वो उन्हें सारे लोगों को डेडिकेटेड है जो कि लिखते ने पर सांझे नहीं करते अपने जिहड़े ख्याल होंदे ने, लिख के एक साइड ते रख देंदे ने, ते सोचदे ने कि जद कदे कोई दोस्त मिलेगा, कोई अपना मिलेगा ते उहदे नाल सांझा करांगे। ते रेडियो तो अच्छा दोस्त होर की हो सकता है। सो इस करके असीं जिहड़ा प्रोग्राम है तुहाडे लई लैके आए हैं, ते तुसीं साढ़े नाल इस प्रोग्राम दे विच शामिल हो सकते हो। किवें शामिल हो सकते हो मैं दस दिंदी हाँ, साडा वट्सएप नंबर हैगा है जी 9855-10-10-27-9855-10-10-27। इहदे ते तुसीं अपनी लिखी हुई कविता, नज़म, शेर व शायरी सांझी कर सकते हो। पर जेकर जे तुसीं किसी होर दी लिखी हुई सांझी कर रहे हो तो उहदे विच उहनां दे नाल उस दे नाल उहनां दा नाम जरूर लिख दिओ। अगली जिहड़ी गज़ल है जसप्रीत शर्मा होरां दी आवाज़ विच तुहाडे लई पेश कर रही हाँ।

सितारों से भरे हुए रात पसंद है, दूर से सुननी उसकी बात पसंद है। तारीफ के काबिल भी हैं उसके बाल, पर मुझे उसकी आंखें पसंद है। प्रोग्राम तो इंजॉय कर रहे हो दिलाज शायर अपनी दोस्त दे होस्ट चार्जरिया दे नाल। ते इस प्रोग्राम दे विच असीं तुहानूं सारिआं नूं न्यौता दिंदे हां कि तुसीं शामिल हो ते अपने दिल की गल, अपने दिल दा जिहड़ा तुहाडा शायर है तुसीं उहनूं बाहर कढो। जतिन जो कि अमृतसर तो ने एक बहुत ही सोहना शेर साडे नाल सांझा करदे ने, लिखदे ने कि और जब चांद पसंद आ जाए तो आसमान में कितने भी सितारे हों कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही शख्स को सारा जहां माना तो मलाल कैसा, फिर सारा जहां भी अपना नहीं हुआ तो मलाल कैसा। ये जो जीता हूं तेरे आने की उम्मीदों पर मैं, किसी दिन मर भी गया तो मलाल कैसा। एक होर कविता साडे नाल सांझी करदे ने साडे दोस्त अमन जो कि अमृतसर तो ने, लिखदे ने कि मेरे हिस्से भी आ सकते थे तुम, मेरे हिस्से भी आ सकते थे तुम, मिटती हुई हाथों की लकीरों को शायद बचा सकते थे तुम। मेरे हिस्से भी आ सकती थी वो गोद तुम्हारी, जिसमें सर रख कर मैं इस दुनिया के समस्त पीड़ाओं से मुक्त हो सकता था, जीवन के समस्त सवालों के जवाब बन सकते थे, मेरे हिस्से भी तुम आ सकते थे। ते बहुत ही वधिया लगता है जदों सारे दोस्त अपनी इन्नी सोहनिया सोहनिया शायरिया साडे नाल सांझियां करदे ने। ते जिहड़े दोस्त अजे भी झिझक रहे ने, सोच रहे ने की किता जावे, असीं तुहानूं दस दिंदे हां तुसीं की करना है। साडा

व्हाट्सएप नंबर हैगा है जी 9855-10-10-23-9855-10-10-27। इस नंबर ते तुसी सानू अपनी लिखी हुई कोई भी नसम शेरो शायरी कविता सांझी करनी है। अगली जड़ी गज़ल है बहुत ही प्यारी जी, ना जाने कब पलट के आए, तुहाडे लई पेश कर रही हूँ।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के एक और अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक नया दिन है और एक नया रेडियो डॉक्टर का अंक है और आप सबकी भागीदारी जो इसमें है वो हर बार की तरह बहुत जरूरी है। लेकिन विषय जरूर सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए। आज का हमारा विषय बहुत जरूरी है आप सबके लिए जानना। आज हम बात करेंगे क्लब फुट पर। क्या होता है क्लब फुट और किस तरह से इसको पहचाना जा सकता है और फिर इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ये सारी बातें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनने को मिलेंगी अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा सुनते हैं। 3 से 4 बजे तक आप इस कार्यक्रम को प्रतिदिन सुनते हैं एफएम रेनबो पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर, और इस कार्यक्रम में आप भाग भी लेते हैं ये आप जानते हैं। लेकिन पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दूं हमारे आज के जो रेडियो डॉक्टर हैं उनसे। तो विषय है क्लब फुट कॉजेज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, और हमारे आज के रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस। आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल 30 हजारी दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मैथ्यू आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में।
2: नमस्कार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को यहाँ बुलाने के लिए।
1: सर धन्यवाद आपका, आप तो समय निकाल कर आए हैं, अति व्यस्त आपका शेड्यूल है हम जानते हैं, बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं आपकी ओपिनियन चाहते हैं और वो ओपिनियन आप सबको देते हैं, पर यहाँ इस मंच के माध्यम से रेडियो डॉक्टर के माध्यम से बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और हम ये भी चाहते हैं कि वो जो भी हमें सुन रहे हैं अगर इस विषय पर कुछ पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब इसके एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे लोगों का इलाज कर चुके हैं। तो सबसे पहला प्रश्न डॉक्टर साहब, बहुत सारे श्रोता ऐसे होंगे जो इस विषय को नहीं समझ पा रहे होंगे कि किस विषय पर हम आज बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्लब फुट होता क्या है।
2: ये आम तौर पर लोगों को मालूम नहीं है इसके बारे में, और हमने ये भी देखा है कि हिंदुस्तान के कई जगहों पे हमने देखा है कि इसका नाम अलग हिंदुस्तानी नाम नहीं है।
1: अच्छा।
2: हिंदी में नाम नहीं है और किसी और भाषा में नाम नहीं है। इसको क्लब फुट है, अंग्रेजी शब्द है क्लब, जो कि गोल्फ का क्लब होता है, वैसा पैर टेढ़ा हो जाता है।
1: अच्छा।
2: तो जब बच्चा पैदा होता है एक या दोनों पैर हो सकते हैं, दोनों टेढ़े होते हैं जैसे गोल्फ का क्लब हो। अब उदाहरण के लिए गोल्फ क्लब तो सारे जानते नहीं है, गांव वाले तो नहीं देखा होगा उन्होंने, तो हॉकी स्टिक जैसे टेढ़ा हो जाता है पैर, उसको पैदाइशी होना।

0: चाहिए, तभी हम इसको क्लबफुट के श्रेणी में मानते हैं। तो
1: जी
0: क्लबफुट ऐसी बीमारी है पैदाइशी पैर के टेढ़ेपन की, जिसमें पैदाइशी एक या दोनों पैरों में टेढ़ापन होता है।
1: जी तो आप समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे क्लब फुट, इसके कॉजेस, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट पर। डॉक्टर मैथ्यू वर्गिस हमारे साथ रहेंगे इस कार्यक्रम में। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं। आप सबके प्रश्नों का हमें इंतजार है। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और बिल्कुल सही कहा गया है कि हमारी जो किस्मत है वो हमारी मुट्ठी में होती है, बस हमें जानने की जरूरत होती है। और किस्मत यहाँ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर हमें पता है कि इस तरह की कोई बीमारी है तो हम अगर प्रयास करें, सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंचे तो कई बीमारियों का इलाज संभव है। और ऐसी ही एक बीमारी है क्लब फुट, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस के साथ। आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो हम क्लब फुट की बात कर रहे हैं कि ये कितनी प्रिविलेंट है ये बीमारी?
1: स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर 1,000 बच्चे जन्मते हैं तो उनमें से एक बच्चा क्लब फुट वाला हो सकता है।
0: 1,000 में से एक
1: में क्लब फुट हो सकता है, तो ये काफी प्रेविलेंट है। अगर देखा जाए तो अगर हिंदुस्तान के आंकड़े अगर देखे जाएंगे तो जो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में बर्थ डिफेक्ट, जो पैदाइशी जो डिफेक्ट हम देखते हैं, उनमें से सबसे कॉमन

0: डिफेक्ट्स में से एक है,
1: अच्छा.
0: और भी डिफेक्ट्स हैं जैसे क्लेफ्ट पिलेट है, जैसे क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, और स्पाइना बाइफिडा, स्पाइन का एक प्रॉब्लम है, वो काफ़ी प्रेवलेंट है. लेकिन जो सबसे कॉमनली एक ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में जाता है वो क्लबफुट
1: तो
0: है,
1: काफी कॉमन है जैसा आप कह रहे
0: बहुत
1: हैं,
0: कॉमन
1: लेकिन
0: है.
1: अभी भी इसकी संपूर्ण जानकारी हमारे पास नहीं है, और जानकारी या यूं कहे अवेयरनेस नहीं है. और इसीलिए आज इस कार्यक्रम को हमने रखा है कि हमारे श्रोता जो दूर दूर से जुड़ते हैं इस कार्यक्रम के साथ, वो जाने इसको, समझें इसको. और आप जैसा बता रहे हैं, हम आगे बात करेंगे इसका इलाज कैसे संभव है, इस पर भी हम बात करेंगे. पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो होता है ये कैसे हो जाता है, क्या कोई कारण होता है?
0: ये इसका पहले सोचते थे कि जेनेटिक है, हालांकि सारे फैमिलीज में नहीं होता, कुछों में ही फैमिलीज में निकल आता है. एग्जैक्ट कारण जेनेटिक नहीं है. ये जब बच्चा माँ के पेट में होता है और बढ़ रहा होता है, तो बढ़ते वक्त कुछ हो जाता है जिसकी वजह से पेट एड हो जाता है. अब एक ज़माने में ये माना जाता था, अभी ये माना जाता है कि पैकेजिंग डिफेक्ट है, यानी कि अंदर पेट में जगह तंग था इसलिए बच्चे का पेट टेढ़ा हो गया. ये भी होता है, और ये कुछ बच्चों में बहुत मामूली सा डिफेक्ट होता है, और मैनिपुलेशन से, फिजियोथेरेपी से, और कुछ एक दो प्लास्टर से सही हो जाते हैं.
1: जी.
0: लेकिन ये अलग है, पोस्चुरल क्लब फुट इसको बोलते हैं, जो पैकेजिंग डिफेक्ट वजह से बोलते हैं. दूसरा है कि बच्चे का पैर एक या दो दोनों टेढ़े हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि पैकेजिंग की वजह से हो, डेवलपमेंटल यानी कि बढ़ते वक्त बच्चे के पैर में कहीं कुछ कमी आ जाती है जिससे ये होता है. पूरा कारण नहीं मालूम है
1: जी जी
0: अभी
1: जी
0: तक. डेवलपमेंटल पाथ पे लोगों ने पहचाना है, लेकिन सारे बच्चों में नहीं भी देखा जाता है. तो
1: जी
0: इसलिए दावे के साथ कहना कि ये कारण है और ये उपचार है, नहीं है ऐसा.
1: नहीं हो सकता. पर सर, क्या कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, बिकॉज रिसर्च हर फील्ड में चल रही है, तो कहीं कुछ ऐसा पता लगा हो कि ये रिस्क फैक्टर्स बन सकते हैं, तो वो थोड़ा सा हम जाने.
0: हाँ, तो उसमें जहां तक अगेन आंकड़े अगर
1: हाँ
0: देखेंगे,
1: जी.
0: लोग कहते हैं कि स्मोकिंग, अब स्मोकिंग अगर माँ तो स्मोक नहीं करती, हो सकता है कि घर पे कोई परिवार का सदस्य स्मोक करता होगा,
1: अच्छा.
0: पति स्मोक करते होंगे, या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई स्मोक करता होगा. तो ये हमें जानना जरूरी है कि माँ को जहां तक हो सके कोई भी एनवायरमेंटल जो पोल्यूटेंट्स हैं, या ऐसी दवाइयां जो कि कई बार दौरों की दवाई होती है, इन सबसे हमें संभल के इनका प्रयोग करना चाहिए.
1: जी. तो ये कारण बन सकता है, जैसा पैसिव स्मोकिंग भी कारण बन सकता
0: पैसिव
1: है.
0: स्मोकिंग भी कारण बन सकता
1: जी
0: है.
1: जी यहाँ पर हम इसके बारे में और बात करेंगे. एक हमारे लिसनर हैं जो फोन लाइन के जरिए हमसे जुड़ गए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं. हेलो
2: हेलो.
1: जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं.
2: हाँ जी, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली से ही.
1: हाँ जी, बताएं अपना प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं.
2: हाँ, पहले तो शालिनी मैम को शालीनता से ही नमस्कार,
1: जी नमस्कार,
2: और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार और आभार.
0: नमस्कार.
2: हाँ डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल तो ये है कि ये जो
1: क्लब फुट, हाँ जी,
2: क्लब फुट की जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ आप ये टकने तक या सिर्फ टकने टकने तक ही मानी जाती है? पहला सवाल तो मेरा
0: टकने टकने तकते ही मानी जाती है.
2: ठीक है
1: जी,
0: टकने के ऊपर नहीं होती.
2: अच्छा. अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने कहा ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, और मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि उनको बचपन में प्रॉब्लम नहीं होती है, पर बाद में चल के वैसे पैर में मोच आ गई या मतलब कोई और प्रॉब्लम हो
0: नहीं,
2: गई.
0: मैंने हेरिडिटरी प्रॉब्लम नहीं बताया है. हेरिडिटरी नहीं होता, ये प्रॉब्लम पैदाइशी है, लेकिन हेरिडिटरी यानी कि माँ से बच्चे को, वो बहुत कम होते हैं, वो उनकी अलग कैटेगरी होती है. सब में ऐसा नहीं होता, आमतौर पे हमें हेरिडिटरी कुछ नहीं मिलता है.
2: अच्छा, अब मैं जानना ये चाहूंगा, दूसरा सवाल मेरा है कि कुछ लोगों को तो आपने कहा बचपन में पैदाइशी होती है, पर कुछ लोगों के पैर बचपन में ठीक रहते हैं, पर जो जो बड़े होते हैं वो तो कुछ
0: वो
2: पैर
0: क्लब
2: हो
0: फुट
2: जाते
0: नहीं
2: हैं.
0: होता, वो क्लब फुट नहीं आता. उसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा.
1: जी
2: तो इसकी मतलब क्यूरेबल है, इससे रिवर्सिबल
0: हाँ, ये हाँ, यही तो आप प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम. तो इसका पूरा जो है आज की तारीख में नए तरीके से इलाज है, जिससे कि पैर अच्छी तरह से देखने में बराबर बना सकते हैं.
1: जी धन्यवाद राजेंद्र जी प्रश्न करने के लिए. और इसी पर आप इस कार्यक्रम को सुनिए, अभी हम बात ट्रीटमेंट पे भी करेंगे. और डॉक्टर साहब जैसा बता रहे हैं, अगर इसको अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है तो ये पूरी तरह से डॉक्टर साहब क्योर हो सकता है ना. जी
0: इडियोपैथिक क्लब फुट होता है, एक कैटेगरी होता है, 85 से 90% क्लब फुट इडियोपैथिक क्लब फुट होते हैं, जिसमें और कोई और तकलीफ नहीं होती, तो उनको हम पूरी तरह से इलाज से कर
1: कर
0: सकते हैं,
1: सकते हैं.
0: बशर्ते
1: हाँ,
0: बच्चा जल्दी आ जाए.
1: जल्दी आ जाए
0: देर हो जाए तो दिक्कत
1: तो
0: हो जाती है.
1: जल्दी, कितना जल्दी डॉक्टर साहब?
0: हाँ, कितना जल्दी है? अब मेरे पास माएँ आती हैं, पेरेंट्स आते हैं कि अल्ट्रासाउंड लेके आ जाते हैं, आप क्या करें, इसको गिरवाएं क्या? नहीं, वो नहीं होना चाहिए.
1: क्या

0: क्या जन्म से पहले भी इसका पता लग सकता है
1: हाँ, जन्म
0: अल्ट्रासाउंड?
1: से पहले भी पता चल सकता
0: अच्छा,
1: है। आमतौर पे 16वें 14-16 हफ्ते के बीच में हम पता कर सकते हैं
0: अल्ट्रासाउंड से?
1: अल्ट्रासाउंड से,
0: अच्छा
1: 14 और 16 हफ्ते के बीच में तो पता चल सकता है। और ये देखा गया कि 90% लोगों में ये अल्ट्रासाउंड की डायग्नोसिस सही होती है।
0: ओके
1: तो ये देखना होता है कि क्या केवल यही प्रॉब्लम है या कुछ और भी बच्चे में प्रॉब्लम है कि नहीं, वो बहुत जरूरी है। अल्ट्रासाउंड का पूरा रिपोर्ट देखना जरूरी है कि और कोई प्रॉब्लम
0: तो
1: है या नहीं।
0: जैसा
1: तो
0: आपने बताया कि अगर अल्ट्रासाउंड में पता लग गया है, और आपने बोला कई बार लोग कहते हैं कि हम बच्चा ना रखें क्योंकि इस तरह का है, ये सही
1: ऐसा
0: डिसीजन
1: बिल्कुल नहीं,
0: नहीं
1: कतई नहीं
0: है
1: होना चाहिए। एक
0: जी?
1: एक जान बेकार में आप लूज करोगे,
0: बिल्कुल,
1: गवाओगे, नहीं नहीं होना चाहिए ऐसे,
0: अच्छा
1: क्योंकि उसका इलाज
0: इलाज है,
1: उपचार
0: वो
1: है, हम
0: ठीक
1: कर
0: हो सकता
1: सकते
0: है।
1: हैं, ठीक
0: बल्कि
1: हो
0: आपको
1: सकता है
0: खुश होना
1: बच्चा।
0: चाहिए कि जल्दी पता लग गया है, तो
1: हाँ,
0: जैसे ही बच्चा पैदा हो आप फौरन
1: आप
0: उसको डॉक्टर के
1: जल्दी
0: पास
1: इलाज
0: ले
1: के लिए
0: सकते
1: ले
0: हैं।
1: जाएं, प्लान
0: बिल्कुल
1: करके जल्दी इलाज के लिए ले जाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे एक और श्रोता हमारे साथ हैं। हेलो
2: जी नमस्कार मैडम जी, नमस्कार, राजकुमार छावला से बोल रहा था जी मैं।
0: जी, बताएं राजकुमार जी।
2: नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार है जी।
1: नमस्कार
2: सर मेरा सवाल

0: है तो जैसे ही बच्चा पैदा हो आप फौरन
1: आप
0: उसको डॉक्टर
1: जल्दी
0: के पास
1: इलाज
0: ले
1: के लिए
0: सकते
1: ले
0: हैं।
1: जाएं, प्लान
0: बिल्कुल
1: करके जल्दी इलाज के लिए ले जाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे एक और श्रोता हमारे साथ हैं। हेलो
2: जी नमस्कार मैडम जी, नमस्कार, राजकुमार छावला से बोल रहा था जी। मैं
0: जी जी बताएं राजकुमार जी।
2: जी डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी।
1: नमस्कार
2: सर, मेरा सवाल ये, आपने जो अभी पर्सन ये टॉपिक ले रखा बहुत अच्छा, आज ही पता लगा जी मेरे को इसके बारे में।
0: जी
2: तो हमारी पोती है जी, वो 6 साल की है करीब जी, उसके पैर टेढ़े मेढ़े हैं जी, जो घुटने हैं ना बीच वाले वो ऐसे आपस में मिलके चलते हैं, भिड़के चलते हैं जी, और नीचे से पैर खुले होते हैं जी उनके।
1: वो क्लबफुट नहीं है, क्लबफुट नहीं है, मैंने पहचान लिया आपका प्रॉब्लम। आपके बच्चे का जो है घुटने मिल रहे हैं, यानी कि उसको जिनो वैलगम या नॉक नीज जो है वो है, और इसका आम कारण जो है वो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है, और भी कारण होते हैं वो जांच करने से पता चल जाएगा। आप कृपया डॉक्टरी मुआयना करवाइएगा, उससे कारण पता करके पूरा इलाज हो सकता है। 6 साल की बहुत अच्छी तरह से उसका इलाज हो सकता है
0: जी।
2: सर उसके पंजे जो पैर पंजे हैं वो भी थोड़े मुड़ गए हैं।
1: वो घुटना टेढ़ा होने के कारण हो जाता है, लेकिन उसके लिए जांच करा के आपको पूरा उसका कराना पड़ेगा, हो जाएगा ठीक।
2: किस हॉस्पिटल में करवा सकते हैं सर वो
0: कोई भी ऑर्थोपेडिक है आप वहां पर जा सकते हैं,
1: हड्डी विभाग हो।
0: जी जी हड्डी विभाग में जा सकते हैं। और अभी हमारे साथ डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस हैं, आप भी हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल में। मैसेजेस बहुत आ चुके हैं डॉक्टर साहब, हमें गुड आफ्टरनून लिखा है आरिफ रब्बानी जी ने फ्रॉम हापुड़, और लिख रहे हैं मेरा सवाल है कि मेरे बड़े भाई की बेटी है 3 साल की है, उसका एक पैर मुड़ा हुआ है और उसका इलाज भी चला लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, क्या वो आगे चलकर ठीक हो सकता है या फिर दोबारा इलाज कराना होगा?
1: 3 साल की बच्ची है, बिल्कुल उसको देखना पड़ेगा कि पहली बात ये क्यों वापस आया। आम तौर पे इसके इलाज के दो उसमें खंड होते हैं। पहला खंड जब डॉक्टर उसको प्लास्टर से ठीक करता है और उसी मामूली सी एक सर्जरी होती है जिसमें टांके भी नहीं लगते। दूसरा खंड जिसमें बच्चे को एक स्पेशल जूता दिया जाता है, और अगर ये जूता पहले 3 महीने 23 घंटे पहनना होता है और उसके पश्चात रात को या दिन में जब भी बच्चा सो रहा हो तब डालना होता है।
0: अच्छा।
1: अब और ये 5 साल तक चाहिए होता है। अब लोग जो हैं शुरू तो कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से, साल तक अपना निपटा लेते हैं, जब बच्चा चलने लगता है और बड़ा होता है तब वो जूता पहनना छोड़ देते हैं।
0: ओके।
1: और अगर जूता पहनना छोड़ देंगे तो वापस आ जाती है तकलीफ।
0: तो ये 3 साल की है, तो
1: 3 साल की
0: है,
1: हो सकता है छोड़ दिया होगा। और यही बच्ची अगर 3 साल में, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, थोड़ी देर हुई है, ज्यादा देर नहीं हुई है, आप इसको प्लीज डॉक्टरी मुआयने के लिए ले जाइएगा, और उसका प्लास्टर हो सकता है अभी भी। कई लोग बोलेंगे ऑपरेशन के लिए, बगैर ऑपरेशन के अभी भी मेरे ख्याल से ठीक हो सकता है, और उसको प्लास्टर लगा के उसका जूता का स्पेशल जूता होता है इसका, वो पहनना होता है सोते वक्त, और जो शुरुआत है उसमें ज्यादा देर तक के लिए पहनना होता है तो वो ठीक हो सकता है।
0: सर आपने बोला कि अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, सर्जरी की जरूरत नहीं, तो क्या सर्जरी भी की जाती है और कब की जाती है?
1: जो 90 के दशक तक मेरी जब तक ट्रेनिंग थी पोस्ट ग्रेजुएशन MBBS सारे टाइम पे हम यही सीखते थे कि क्लबफुट का बच्चा प्लास्टर करते हैं लेकिन आमतौर पर ऑपरेशन के लिए जाते हैं।
0: अच्छा।
1: तो काफी पुराने डॉक्टर और काफी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, काफी पीडियाट्रिशियंस और ऑब्स्टेट्रिशियंस सभी ये समझते हैं कि ऑपरेशन से सही होता है, लेकिन आज की तारीख में 90% बच्चे मीडियोपैथिक क्लबफुट वाले बगैर ऑपरेशन के सही होते हैं, केवल प्लास्टर से। ये हमारा प्रोग्राम, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका शालिनी जी का हमें बुलाने के लिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट मैसेज है कि बगैर ऑपरेशन के बच्चे का पैर सही हो सकता
0: जी,
1: है
0: प्लास्टर, तो इसीलिए अगर कोई आपको
1: बशर्ते उसको जल्दी हम पकड़े
0: जल्दी। और दूसरा जो सर बहुत अच्छी बात आपने ये बोली कि अगर कोई आपको सर्जरी एडवाइस करता भी है तो आप जरूर एक बार सेकेंड ओपिनियन ले लें,
1: दूसरी राय ले
0: लें। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, और वैसे तो सारे गीत हमने आज जो सेलेक्ट किए हैं डॉक्टर साहब की पसंद के हैं, लेकिन ये वाला गीत खास तौर पर डॉक्टर साहब ने कहा है कि मैं सुनाऊं, और इसकी वजह ये है कि ये माँ पर केंद्रित है।
1: मैंने बच्चों का और माँ के केंद्रित करके और होप के केंद्रित करके मैंने सोचा था, माँ ही बच्चे की सब कुछ होती है, तो ये बहुत अहम चीज है समझने के लिए, तो इसलिए मैंने कहा बहुत अच्छा गाना,
0: बहुत खूबसूरत गीत है, आइए हम भी सुनते हैं अपने सभी श्रोताओं के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर चल रहा है और आज हम बात कर रहे हैं क्लब फुट पर, क्लब फुट कॉजेज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, अपने रेडियो डॉक्टर एक्सपर्ट के साथ जो कि है डॉक्टर मैथ्यू वर्गिस, हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल 30,000 दिल्ली। और डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से हमें बताया कैसे इसको पहचाना जा सकता है और कितनी जल्दी एक्ट करके इसको ठीक भी किया जा सकता है। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास हैं डॉक्टर साहब, ये मैसेज हमें किया है, लिखने वाले हैं रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, ओखला संगम बिहार से लिख रहे हैं। डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस, शालिनी मित्तल जी को नमस्कार। आज क्लब फुट बीमारी के संबंध में काफी जानकारी प्राप्त हुई, इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य के प्रति काफी हमें जागरूकता मिलती है, इसके लिए धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर जी, आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, अगर आपका कोई प्रश्न है तो जरूर हमें आप लिख सकते हैं। ये मैसेज हमको लिखकर भेजा है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है पर डॉक्टर साहब लिखा है कि मैं एक विलेज में रहता हूं और मुझे विलेज में ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा इस बीमारी का, क्या मुझे सिटी आना पड़ेगा ट्रीटमेंट लेने के लिए?
2: बहुत ही जटिल प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी एक संस्था है क्योर इंटरनेशनल इंडिया ट्रस्ट, जिसके तहत हम पार्टनर करते हैं। कोशिश हमारी है कि कोई भी बच्चा जिसको क्लबफुट हुआ है उसको इसकी वजह से विकलांगता ना हो। तो गांव में लोग, दूर दराज के लोग, जब हम मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं डॉक्टरों को ट्रेनिंग के लिए, इसके लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत होती है इसकी ट्रीटमेंट के लिए, तो जब जाते हैं तो गांव के लोग जो आते हैं वो दूरियां मीलों में नहीं बताते होते हैं, वो दूरियां घंटों में नहीं बताते, कितने घंटे का सफर है नहीं बोलते होते, वो दूरियां बताते हैं रुपये में।

0: 500 रुपए दूरी से आए हैं डॉक्टर साहब हम। तो ये जो है ना रुपए की दूरी वो सबसे अधिक दूरी होती है। तो अगर गांव का व्यक्ति अगर किसी तरीके से एक ऐसा तजुर्बा कर जिसने ट्रेनिंग ली है इस विधि में उसके पास पहुंच जाए तो सबसे अच्छा है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: जो प्रोग्राम है हमारा सरकार की तरफ से है और हर मेडिकल कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में जहां तक हो सके क्लब फुट क्लिनिक है, जहां तक हमारी कोशिश है हम डिस्ट्रिक्ट में भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी इसके लिए पूरी सपोर्ट कर रही है।
1: जी जी, बहुत अच्छी हम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने यहाँ बोली कि पैसे की दूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आपका हेल्थ और इससे आपका पूरा फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है, थोड़ा सा समय निकालना होगा, थोड़ा सा पैसा जो आपका लगेगा आपको, लेकिन बहुत
0: इसका
1: दूरी
0: इलाज
1: भी नहीं।
0: मुफ्त, इसका इलाज मुफ्त होता
1: अच्छा,
0: है।
1: इलाज भी मुफ्त है, बस आपको अपने डिस्ट्रिक्ट या जहां पर भी है आपको इंफॉर्मेशन आजकल मिल जाती है, आप जरूर पहुंच जाएं।
0: काफी डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदुस्तान में 800 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
1: जगह पे है
0: 800 करीब डिस्ट्रिक्ट है, हम 400 के करीब जगह पे हैं।
1: जी जी, तो बिल्कुल आपको ये सुविधा मिल सकती है। हेलो, हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं। हेलो जी, आप अपना नाम बता दीजिए।
2: पीपी सिंह मेरठ से बोल रहा हूँ जी।
1: हाँ जी बताएं।
2: डॉक्टर साहब ऐसा है मेरे पैरों में तलवों बहुत ज्यादा जलन रह रही है जी।
1: आपको अपने लिए पूछना है।
2: पैरों के तलवों में जलन नहीं बहुत।
0: देखिए ऐसा है, जलन वाली वो क्लबफुट वाली तकलीफ नहीं है। जलन वाली तकलीफ आम तौर पे शुगर के मरीजों में होता है। जलन वाली तकलीफ आम तौर पे उनमें होता है जिनमें की जो विटामिन की कमी होती है, विटामिन बी ग्रुप की कमियां होती है, बी ग्रुप की कमी से हो सकती है, कई और कारणों से भी जलन हो सकती है, कमर में तकलीफ की वजह से हो सकती है। तो वो जांच करके ही होगा, बगैर देखे नहीं बता पाऊंगा
1: जी,
0: मैं
1: जी, जी। तो डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया है, आपको जाकर अपना टेस्ट कराना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ये एक मैसेज आया है कि ये जानना चाहते हैं कि अगर पूरा इलाज हो जाता है तो क्या उसके बाद भी इलाज कंटिन्यू रहता है या कुछ फॉलो अप होता है।
0: हाँ, बहुत जरूरी है फॉलो अप। इसका ट्रीटमेंट में हम प्लास्टर लगाते हैं जो कि हर हफ्ते प्लास्टर बदला जाता है।
1: अच्छा।
0: और आम तौर पे 6 से 8 प्लास्टर के अंदर अंदर पूरा हो जाता है, पैर टेढ़ा पैर पूरा सीधा हो जाता है। और 6ठे प्लास्टर के बाद आम तौर पे वो देख के गिन के नहीं होता, जो डॉक्टरी मुआयना करके देखते हैं कि अब जो है ऑपरेशन के लिए तैयार है, तो उस वक्त वो मामूली ऑपरेशन करके पूरा पैर सीधा कर देते हैं। और प्लास्टर लगता है 3 हफ्ते का, यानी कि 6 हफ्ते का हर हफ्ते प्लास्टर बदलते हैं, उसके बाद 3 हफ्ते का एक प्लास्टर लगता है, कई बार बीच में बुला के प्लास्टर बदलते भी हैं। कुल 9 हफ्ते में ये पैर जो टेढ़ा है पूरा सीधा हो जाता है। उसके पश्चात स्पेशल जूते पहनने होते हैं और ये स्पेशल जूते खास लोगों को पसंद नहीं है क्योंकि दोनों पैर बंधे हुए होते हैं, बीच में एक डंडा होता है।
1: अच्छा।
0: वो लोगों को पसंद नहीं होता, इसलिए लोग समझते हैं कि असुविधा है, ये तंग करता है, एक पैर का जूता पहन लेते हैं, वो गड़बड़ है। एक पैर के जूते से कामयाबी नहीं आती, एक पैर से पीछे में पैर सीधा नहीं रहेगा। तो ये जो है पहले 3 महीने के लिए 23 घंटे, 1 घंटा सफाई के लिए, धोने के लिए, सब के लिए
1: पूरा दिन ही लगभग
0: पूरा दिन लगाना है, और 23 घंटा 3 महीने के लिए, और उसके पश्चात दिन में खुला और रात को या दिन में जब भी बच्चा सो रहा होता है। अब घंटे देखेंगे कितने बजे, बहुत छोटे बच्चे होते हैं नन्हे जो 6 महीने के होते हैं, वो कम से कम 12-14 घंटा सोते होते हैं,
1: तो उस समय खोला जा सकता
0: है, उतने देर तक जूता लगेगा, बाकी टाइम जब बच्चा जागा हुआ है तो वो उसको खुला रख सकते हैं।
1: अच्छा।
0: कोई दिक्कत नहीं है। पहले होता था कि स्पेशल जूता, एक पैर का जूता, उल्टे जूते पहनाए जाते थे, एक पैर का जूता स्पेशल जूता बनता था, वो अलग बनवाए जाते थे, आजकल ऐसा नहीं है।
1: जी, बहुत कुछ बदलाव आया है।
0: बदलाव आया इसमें,
1: जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो और सुविधाएं बढ़ रही हैं। और यहाँ पर एक मैसेज मैं और लेना चाहूंगी, रंजना लिख रही हैं कि एक क्वेश्चन है मेरा कि किस उम्र में इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। वैसे ये बात आप कर चुके हैं लेकिन क्योंकि रंजना जी ने बाद में शायद रेडियो सेट खोला होगा तो ये प्रश्न उन्होंने
0: उम्र का, उम्र का जहां तक जब मैं MBBS में ट्रेनिंग ले रहा था हमें क्लब फुट सिखाया जाता था, ये बताया जाता था ब्रीच डिलीवरी है, यानी कि पैर से बच्चे की डिलीवरी हो रही है तो पहला पैर जब निकलता है उसका प्लास्टर लगाना शुरू करो, इतना जल्दी शुरू करने के लिए बताते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, वेल बेबी क्लिनिक है, वहां माएं जाती हैं, वैक्सीनेशन होता है उनका, डॉक्टरी मुआयना होता है, बच्चे के डॉक्टर चेक करते हैं और वहां पे काफी कुछ वहां पे चलता होती है, स्पर्धा चल रही होती है माओं के बीच में, मेरा नन्ना अब बैठने लग गया, मेरा नन्ना खड़ा होने लग गया, तो वो सब देखते रहते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि अगर एक माँ जिसके क्लबफुट का बच्चा है, दोनों पैर में है,

0: जब वो जाता है क्लिनिक में, माँ को भी बुरा लगेगा कि मेरा बच्चा अभी भी इसी में है, मेरा बच्चा अभी तक खड़ा नहीं हो पाया। इसलिए कोशिश हमारी रहती है कि बच्चे का इलाज इतना जल्दी करें कि माँ के लिए दिक्कत ना हो। जब तक बच्चा खड़े होने लग जाएगा, यानी कि आम तौर पे 7-8 महीने में बच्चा खड़े होने लगता है, तब तक पैर सीधा हो जाना चाहिए
1: जी।
0: और उसकी 23 घंटे की जूते की पीरियड भी खत्म हो जानी चाहिए, ये जरूरी है। हाँ, ये भी है समझना कि गांव में कुआं पूजा होता है, कई जगह काफी रीति रिवाज हैं, उसकी भी एक अहमियत होती है। उसको भी अहमियत देते हुए अगर 6 हफ्ते में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 हफ्ते में भी इलाज हो सकता है और पूरा सही हो सकता है।
1: जी
0: बट ये नहीं कि आप उसको साल के
1: बिल्कुल,
0: बाद ला रहे
1: हाँ
0: हैं,
1: जी,
0: आप 1.5 साल के, वो नहीं होना चाहिए।
1: वो नहीं होना
0: जहां
1: चाहिए
0: तक हो सके जब तक बच्चा खड़ा हो तब तक पैर सीधा हो जाना चाहिए।
1: जी। तो आपने जैसा बताया कि जितना जल्दी होगा उतना ही जल्दी ट्रीटमेंट
0: हाँ
1: असर
0: जी,
1: भी दिखाएगा और उतना ही आसान भी होगा ट्रीटमेंट
0: हाँ
1: करना।
0: जी,
1: हमारे पास एक मैसेज और आया है, देवदत्त पारसोलिया जी लिख रहे हैं प्रताप विहार गाजियाबाद से। आप दोनों, आपकी पूरी टीम को सादर प्रणाम। नाइस टॉपिक, सुपर प्रोग्राम, एक्सलेंट प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू आर प्रोग्राम एंड फॉर राइटिंग टू अस। सर, ये बताइए कि अगर जैसे प्रश्न तो बहुत सारे हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर कि आपने बताया जितना जल्दी इलाज होगा उतना ही बेहतर है, माँ के लिए भी, बच्चे के लिए भी, सभी के लिए। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई नहीं पहुंच पाया समय पर और डिले हो गया, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर क्लब फुट को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए?
0: तो देखिए, जब एक बच्चा जब बच्चा होता है तो उसकी हड्डियां जो हैं वो अलग किस्म की होती हैं, कार्टिलेजिनस होती है, पैर की हड्डियां कार्टिलेजिनस होती हैं। अगर आप एक्सरे लेंगे, एक्सरे नहीं लेना चाहिए बच्चों का, एक्सरे 6 महीने तक हम कोशिश करते
1: नहीं
0: कि
1: लेना
0: कोई
1: चाहिए,
0: एक्सरे नहीं लेना चाहिए और इसकी डायग्नोसिस के लिए एक्सरे की कोई अहमियत नहीं है, हम रेकमेंड नहीं करते। मैं किसी भी बच्चे का ऐसे में इन्फेंसी में एक्सरे नहीं करते हम, पैर के लिए, क्लब फुट के लिए नहीं करते हैं, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर करें किसी भी कारणवश तो उसमें देखेंगे 2 या 3 हड्डियां ही दिखेंगी। तो ये समझना जरूरी है कि बच्चे की हड्डी कार्टिलेज होती है, जो कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो हड्डी बनती है, कार्टिलेज हड्डी बन जाती है। तो जब बच्चा चलता है, चलने लगता है और कार्टिलेज हड्डी बनने लगती है, शुरू में अगर ठीक कर दिया तो कार्टिलेज नॉर्मल हड्डी बनती है। अगर आपने देर कर दी और बच्चा 3-4 साल का चलता हुआ दौड़ता हुआ गांव से लेके आए हैं तो उसकी हड्डियां बड़ी हो जाती हैं और वो टेढ़ी बनती हैं और उनको ठीक करना मुश्किल होता है,
1: अच्छा,
0: उनमें ऑपरेशन की जरूरत अधिक पड़ती है।
1: ओके,
0: इसलिए जरूरी है कि पहले 6 महीने के अंदर अंदर जहां तक हो सके पैर को सीधा कर दिया जाए।
1: बहुत अच्छी बात। और डॉक्टर साहब, आपने ये भी अभी बताया कि एक्सरे नहीं करना चाहिए जब एक्सरे की जरूरत ना हो, और छोटे बच्चों को भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप एक एक्सपर्ट हैं, आप पहचान सकते हैं कि ये क्लब फुट है, पर जो एक नॉर्मल है उसको तो नहीं समझ में आएगा, तो ये टेढ़ापन क्या सिर्फ क्लब फुट के कारण होता है या कोई और बीमारी में भी टेढ़ापन हो सकता है?
0: बहुत बीमारियां हैं जिनकी वजह से पैर का टेढ़ापन हो सकता है। अब जैसे मैंने बताया कि गांव में लोग, कुछ लोग तो इसको क्लब फुट को भी पोलियो कहते हैं क्योंकि पोलियो से भी ऐसा टेढ़ा हो जाता
1: जी
0: है।
1: जी
0: बट वो अभी जैसे एक हमारे सर्जन ने सवाल करा कि बच्ची का पैर बाद में टेढ़ा हुआ,
1: हाँ
0: अगर बाद में टेढ़ा हुआ है तो वो पोलियो से हो सकता है, बट आजकल पोलियो तो है नहीं। उससे अधिक कॉमन कारण आजकल सेरेब्रल पाल्सी है, उससे भी टेढ़ापन हो सकता है। और भी काफी जेनेटिक कंडीशन है जिसमें कि नर्व की प्रॉब्लम्स होती है और उसकी वजह से पैर बाद में टेढ़े हो जाते हैं या शुरू में टेढ़े हो सकते हैं। तो उनकी बारीकियां देख के एक तजुर्बेकार पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो या एक तजुर्बे वाला बच्चों को देखने वाला पीडियाट्रिशियन भी, वो उसको पहचान सकता है, उनको अलग कर सकता है। और अगर आप पहचान लेते हैं तो मदर्स को और पेरेंट्स को समझाने में भी आसानी रहती है कि वो जो 6 प्लास्टर से 8 प्लास्टर जो में रहता है जिससे कि ठीक हो जाता है और माइनर ऑपरेशन से ठीक हो जाता है, ये बच्चे हो सकता है कि इनमें ज्यादा प्लास्टर लगे। जैसे और बीमारियां आर्थ्रो में कई नाम है, आर्थ्रोग्राइपोसिस है, स्पाइना बाइफिडा, इन सब में ज्यादा प्लास्टर लग सकते हैं और ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, बार बार फॉलोअप की जरूरत पड़ सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझे कि इसकी बारीकियां हैं और जो कि समझ के ही हम आगे बढ़ा सकते
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: तो और
1: बिल्कुल,
0: अगर आपने नहीं करा समय पे तो पैर टेढ़ा बनेगा और उसके लिए मेजर ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है,
1: जी, और लाइफ लॉन्ग ये फिर एक
0: लाइफ लॉन्ग,
1: डिसेबिलिटी भी
0: लाइफ
1: बन
0: लॉन्ग
1: सकती है।
0: बन सकती है।
1: डॉक्टर साहब, आपने बात की कि जल्दी आना चाहिए, लेकिन कई बार इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उनसे बहुत सारे स्टिग्मास भी जुड़े होते हैं, मिथ कहें चाहे स्टिग्मा कहें चाहे, क्योंकि क्या होता है कि जब इस तरह का बच्चा पैदा होता है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं

0: हैं और जो हम अवेयरनेस के जरिए चाह रहे हैं कि ये चीज हम क्लियर करें, तो लोग कहते हैं अरे ये कोई प्रकोप हो गया हमारे ऊपर, पता नहीं कुछ कर्मों का फल हो गया या पुराने जन्मों का कुछ हो गया, तो उस कारण से वो उस चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अरे अपने आप ही ठीक हो जाएगा, कुछ हुआ होगा। मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस तरह के केसेस आपके पास आते होंगे,
1: बिल्कुल आते हैं
0: तो उस
1: मेरे
0: तरह
1: पास।
0: से।
1: हर ओपीडी में जब ऐसे बच्चे आते हैं मेरे पास, मदर या ग्रैंड मदर या जो भी है, मेरे से पूछते हैं डॉक्टर साहब ये किसी गलती से हुआ है, मदर की वजह से हुआ है या फादर की वजह से हुआ है या हम दोनों की वजह से हुआ है या किसी और के कारण हुआ है।
0: जी जी
1: ऐसा कुछ अभी तक नहीं
0: नहीं
1: है,
0: है।
1: कोई किसी को स्टिग्मेटाइज करने की जरूरत नहीं है, कलंकित करने की जरूरत नहीं है। हम ये जान के चलें कि बच्चे का डेवलपमेंटल उसमें प्रोसेस में कहीं कुछ हुआ है, माँ की गलती नहीं है, पिताजी की गलती नहीं है और दादा परदादा की भी गलती नहीं है, वो जेनेटिक कंडीशन अलग है, वो इडियोपैथिक क्लबपुट में अलग गिने
0: जी
1: जाते हैं।
0: जी तो
1: तो
0: किसी की गलती नहीं है,
1: किसी
0: ये
1: की
0: सब
1: गलती
0: जो
1: नहीं
0: है
1: है,
0: स्टिग्मा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टिग्मा जब होता है तो लोग उसकी बीमारी के उपचार की जगह
1: छिपाते हैं, वो
0: छिपाते
1: छिपाते
0: हैं,
1: हैं।
0: छिपाते हैं। सही बोला सर आपने, और जब छिपाएंगे तो ये रोग और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए छिपाना नहीं है, आपको आना है डॉक्टर से मिलना है, एक बीमारी की तरह इसका ट्रीटमेंट कराना है। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में आज बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर हम बात कर रहे हैं, क्लब फुट कॉजेज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट पर। डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस हमारे साथ हैं और बहुत सारी जानकारी डॉक्टर साहब दे रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। जी डॉक्टर साहब।
1: हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि पिछला सॉन्ग जो है मैंने अपने मदर के लिए डेडिकेट करा था,
0: जी
1: और ये वाला सॉन्ग मैं कहूँगा कि मेरे पास इतने सारे माएँ आती हैं, इतनी दुखी होती हैं, मायूस होती हैं, कहती कि पता नहीं क्या होगा, मेरे बच्चा ठीक होगा, चलेगा नहीं चलेगा,
0: जी
1: मायूस होके आती हैं, तो उनके लिए ये गाना है। ये
0: जी अगला
1: वो
0: गाना
1: अगला
0: डेडिकेट कर
1: गाना
0: रहे हैं आप उन सभी माओं को जो,
1: वो सुबह कभी तो आएगी।
0: जी वो सुबह कभी तो आएगी, बिल्कुल। और ये प्यारा सा गीत हम सुनते हैं और बिल्कुल पॉजिटिव फीलिंग के साथ हम सब जानकारियों को अपने अंदर रखते हैं, बिल्कुल सुनते हैं गीत।

0: कहा जाता है कि जब आंख खुले तभी सवेरा, और बिल्कुल वो सुबह भी तभी होती है जब आंख खुल जाती है। आंख खुलने का मतलब हमारा ये होता है जब हमें एहसास हो जाता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उसमें डॉक्टर साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जैसे ही आपको पता लगे कि बच्चे को क्लब फुट की समस्या है तो आप जल्द से जल्द उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं। डॉक्टर साहब, एक मैसेज हमारे पास आया है, रणधीर गुप्ता जी ने दोबारा लिखा है कि मेरी भतीजी की उम्र 16 साल है और जब वो चलती है तो उसके दोनों घुटने आपस में मिलते हैं, आपने बताया इसको नॉक नीज कहते हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि उसमें कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है।
1: अगर 16 साल की है और लड़की है तो जो उसका पैर का टेढ़ापन है वो परमानेंट टेढ़ापन हो गया है, तो उसको सही करने के लिए शल्य चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी।
0: अच्छा।
1: आम तौर पे जो कमी होती है, जो आजकल के दिनों में सबसे ज्यादा देखी जाती है, वो पोल्यूशन की वजह से विटामिन डी के अभाव से होता है। तो विटामिन डी की, बढ़ते बच्चों में विटामिन डी का अगर हम प्रयोग करेंगे तो वो पूरी तरह से सही हो सकता है।
0: तो ये जैसे आपने बताया 16 साल की है तो अब सर्जरी होगी, तो किस उम्र तक इसको सही किया जा सकता है?
1: हाँ, तो इसमें जो है दवाई से जो इलाज है उसके लिए समय चाहिए होता है, समय 1-1.5 साल लगता है उसको ठीक होने में। तो इसलिए अगर बढ़ने की उम्र 1-1.5 साल नहीं है तो दवाई से पूरी तरह से सही नहीं हो सकता। तो उससे पहले आजकल अगर बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है तो नॉकनीज है, उसको दवाई से हम कर सकते हैं। 7-8 साल तक भी हो सकता है, लेकिन लड़कियों में थोड़ा सा मुश्किल है, बट हो सकता 8-9 तक भी। उसके बाद जो है एक माइनर सर्जरी होती है, और उसके बाद अगर पूरी ग्रोथ हो गई है तो उसमें मेजर सर्जरी चाहिए होती है, जिसमें कि हड्डी को कट करके सीधा करना पड़ता है।
0: जी, और ये कितनी एडवाइजेबल होती है सर्जरी कराना?
1: हाँ, अगर टेढ़ापन है और नॉकनीज है और पैर दूर, पंजे आपके दूर दूर जा रहे हैं, तो फिर उसमें चाहिए होता है हमारा। हम ये देखते हैं कि अगर घुटने केवल छू रहे हैं और टखने अगर दोनों के बीच में दूरी नापे अगर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो आमतौर पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन ही बताते हैं डॉक्टर।
0: जी, ये आपको ले जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास।
1: हाँ,
0: तो ये बताएंगे वो आपको सही से, जैसे सर बता रहे हैं। ये हमें मैसेज किया है नरदेव सिंह चौहान ने कोटद्वार उत्तराखंड से कि डॉक्टर साहब आपको नमस्ते कह रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि माँ बाप को जागरूक होना चाहिए और मैंने देखा है कि लोग कहीं कहीं भी बच्चों को लेकर जाते हैं, डॉक्टर को के पास नहीं ले जाते हैं। उन्होंने लिखा है कि पहलवान के पास ले जाते हैं जो कि बहुत गड़बड़ भी कभी कभी हो जाती है, बच्चा विकलांग भी हो जाता है। तो जैसा हम बात कर रहे थे स्टिग्मा की, शायद कहीं ना कहीं लोग छुपा रहे हैं उसको, अपने तरीके से उसको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, तो क्या कहेंगे सर?
1: लोगों को डर लगता है और डर के कारण वो छुपाते हैं। मदर्स आप मेरे पास आते हैं, पेशेंट कहते हैं कि ये डॉक्टर साहब ये जो जूता है ना, ये हम बाहर जा रहे हैं, शादी है तो वहां पे हम ले जाए नहीं ले जाए।
0: अच्छा,
1: तो वो दिखाना नहीं चाहते कि उनके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है।
0: जी, जी।
1: तो मानो या ना मानो वो कलंक जो है वो लोग सोचते हैं कि अपने परिवार पे नहीं लेना चाहते हैं, तो इसलिए वो छुपाते हैं। ये जो है डरने की कोई बात नहीं, किसी की गलती नहीं है और मेरे कहने पे ऐसे कलंक जाएगा भी नहीं, बट हमें सतर्क होना है कि कलंक की वजह से, कलंक के डर से पूरी तरह से इलाज जिस चीज का हो सकता है उससे हम बच्चे को वंचित ना करें।
0: बिल्कुल,
1: ये बहुत जरूरी है समझना। और अगर हम इसका इलाज सही कर देते हैं, और ये जो विधि है ये पॉन्सिटी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट बोलते हैं, पॉन्सिटी, इग्नेशियो पॉन्सिटी एक सर्जन थे यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में, यूएसए में, उनकी विधि है, 1946 में निकली थी, लेकिन लोगों ने इसको अडॉप्ट नहीं करा। अडॉप्शन इसका केवल 90 के दशक में
0: अच्छा।
1: ही हुआ। डॉक्टरी जो पॉपुलैरिटी जो आई है वो 90 के दशक में ही। अब जो है हम रेकमेंड करते हैं कि पॉन्सिटी मेथड से, और ये पहलवान के पास से नहीं हो सकता, बारीकियां हैं इसकी, इसमें खास ट्रेनिंग होती है, एक दो दिन की ट्रेनिंग। इनफैक्ट वहां पे आयोवा यूनिवर्सिटी वाले बताते हैं कि आपको वहां रह के सीखना चाहिए, तभी इसकी बारीकियों से आप

0: तरह से, अगर आप पूरी तरीके से पैर को अच्छी तरीके से सीधा करना चाहते हैं तो उसकी बारीकियों को समझ के तभी इलाज करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल
0: पॉन्सेटी रेजिम।
1: जी, इसके बारे में हम पुनः एक बार लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं वो कई ऐसे भी श्रोता हैं जो वही वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो हम एक्चुअल बात कर चुके हैं, तो कहीं देर से जुड़े हैं या किसी और कार्य में व्यस्त होंगे। हम चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम को शुरू से सुने, तो बहुत सारी जानकारी आपको ऐसे ही मिल जाएगी। कोई बात नहीं, आप सुन रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। ये हमें मैसेज लिखा है उन्होंने, थैंक यू कहा है हमें प्रोग्राम के लिए, और साथ ही लिखा है व्हेन आर वी एबल टू फाइंड आउट दैट चाइल्ड इज हैविंग क्लब फुट ओनली आफ्टर बर्थ। तो ये क्वेश्चन क्योंकि हम पहले ले चुके
0: जवाब दे
1: हैं।
0: चुके
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: 14 से 16 हफ्ते में,
1: हाँ जी
0: प्रेगनेंसी के 14 से 16 हफ्ते में, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर, दूसरी तिमाही में हम इसको पहचान सकते हैं।
1: एक प्रश्न और आया है मैसेज के माध्यम से, रमेश लिख रहे हैं नोएडा से। गुड आफ्टरनून डॉक्टर वर्गीस एंड शालिनी मैम, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मैनेज अ क्लब फुट विद कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, ये इनका
0: हाँ
1: प्रश्न है।
0: हाँ
1: जी
0: बहुत बहुत कम बच्चों में ये दोनों चीज़ें साथ साथ
1: अच्छा
0: होती हैं। तो हम हिप का अगर डिसलोकेशन और ये भी है तो हिप जो है प्रायोरिटी लेता है, लेकिन अगर बच्चे की शुरू से ही हमने इसकी पहचान कर ली, जैसे ही बच्चा जन्मा नियोनेटल नर्सरी बोलते नर्सरी में नियोनेटल यूनिट में इसकी डायग्नोसिस अगर हो जाए, अल्ट्रासाउंड से हो जाती है, डॉक्टरी मोयने से हो जाती है, पीडियाट्रिक नियोनेटल स्क्रीनिंग से हो जाती है, डीडीएच की जो डिसलोकेशन हिप की स्क्रीनिंग अगर शुरू शुरू में हो जाए तो उसको एक हार्नेस होता है वो डाल दिया जाए, और बच्चे को ऐसा कर सकते हैं क्लब फुट का प्लास्टर लगा दिया और अपने पैबलिक हार्नेस, एक हार्नेस होता है जो कि बेल्ट होती है जो बच्चे को डाल के डिसलोकेशन हिप हम सही कर सकते हैं,
1: अच्छा
0: और कई बारी नहीं होता तो उसमें प्लास्टर लगाना पड़ता है। तो डीडीएच जो है डिसलोकेशन हिप जिसको बोलते हैं वो प्रायोरिटी लेती है, लेकिन दोनों का साथ साथ चल सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरे दिमाग में इस समय आ रहा है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपने क्लब फुट बताया तो इसके साथ हिप डिसलोकेशन की बात हो रही है, और भी कोई ऐसी बीमारी है जिसमें वो प्रोन हो जाता है अगर किसी को क्लब फुट है तो?
0: हाँ, एक जैसे मैंने बोला कि आर्थरोग्राइपोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनिटा एक बीमारी है,
1: अच्छा
0: और एक और बीमारी है जिसमें कि हम जो सिंड्रोम्स होते हैं, स्पाइना बाइफिडा है, एक्सटीटिस डिस्प्लेजिया है, कई और बीमारियां हैं जिससे कि देखने में पैर क्लबफुट जैसा दिखता है लेकिन बच्चे को कई और तकलीफें होती हैं,
1: अच्छा
0: हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रेन की प्रॉब्लम होती है, स्पाइन की प्रॉब्लम होती है, तो वो सब शुरू शुरू में ही पकड़ लेनी चाहिए, और वो सारी बीमारी अगर जल्दी पकड़ लोगे तो उनका जल्दी उपचार हो सकता है और बच्चे को विकलांगता से आप बचा सकते
1: तो
0: हैं।
1: कैसे पकड़ में आती है डॉक्टर साहब, उसके लिए कोई क्लिनिकल टेस्ट अवेलेबल है?
0: क्लिनिकली देखने से, अब जैसे मेरे पास एक बच्चा आता है, 3 दिन के 4 दिन के बच्चे आते हैं मेरे पास, वो नर्सरी से कॉल आता है, जाके हम देखते हैं सर से पैर तक सब कुछ देखते हैं हम,
1: अच्छा
0: आंखें कैसी है, सिर कैसा है, कि इसके कान ठीक है कि नहीं, नाक ठीक है कि नहीं, क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट है कि नहीं, उसका जबड़ा ठीक है कि नहीं, उसकी गर्दन में कोई तकलीफ है कि नहीं, गर्दन छोटी है कि नहीं, उसके कंधों में कोई परेशानी है कि नहीं, उसकी कोनियाँ पूरी सीधी होती कि नहीं, अगर अंगूठा उसका अंदर मिला हुआ है नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई नुक्स है कि नहीं, वहाँ कोई बाल तो नहीं है, वहाँ पर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, वहाँ पर कोई रसौली तो नहीं है, वो देखते हैं, फिर कूल्हा का देखते हैं, कूल्हे में कोई दिक्कत तो नहीं है, और उसमें नाभि में कोई हर्निया तो नहीं है, वो चेक करते हैं, तो सारी जो है हेड टू टो, सिर से पैर तक पूरा जांच हम
1: तो
0: करते
1: ये
0: हैं,
1: जो
0: और
1: जांच आप
0: उसको
1: करते हैं,
0: इडियोपैथिक क्लब फुट हम तभी
1: हाँ
0: कहते हैं जब
1: हाँ
0: हमने सब कुछ जांच कर
1: अच्छा
0: लिया हो, और ये पहला जो डॉक्टर जो देख रहा है, ऑर्थोपेडिक सर्जन जो देख रहा है, जो पीडियाट्रिशियन जो देख रहा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो देख के ये पहले देखें। कई बारी कुछ बारी मिस हो जाता है, फिर वो जब हम देखते हैं कि सही नहीं होता, फिर देखते हैं, दोबारा देखते हैं, अच्छा ये मिस कर दिया था हमने।
1: जी। तो डॉक्टर साहब, आप जो कहना चाह रहे हैं अगर मैं सही समझ रही हूँ, कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसका आप सारी इन्वेस्टिगेशंस
0: पूरा
1: मैनुअली देखते हैं, एक एक
0: क्लिनिकली
1: चीज एक,
0: क्लिनिकली
1: हाँ
0: डॉक्टरी मुआयना देख के है,
1: बिल्कुल, एक एक चीज देखी जाती है
0: हाँ
1: और ये
0: देखी
1: हर
0: जाती है,
1: बच्चे के साथ
0: सारी
1: की
0: देखते
1: जाती
0: हैं
1: है।
0: हम, सब कुछ देखते हैं।
1: जी, और तभी ये पकड़ में आ जाती है। तो ये बताइए कि अगर ये जो हम बात कर रहे हैं क्लब फुट की, इसकी क्या सिवियरिटीज की डिग्री भी होती है, कुछ बताया गया है, स्टेजेस भी
0: तो
1: होते
0: जब
1: हैं?
0: हम हर हफ्ते प्लास्टर करते हैं तो उसकी जो सिवेरिटी है उसको स्कोर किया जाता है।
1: अच्छा
0: पिरानी, शफीक पिरानी एक डॉक्टर थे कनाडा के, उन्होंने एक स्कोरिंग सिस्टम निकाला है, तो नवजात शिशु का अगर क्लबफुट सिवेरिटी हम स्कोर करते हैं, तो हर हफ्ते जब जाते हैं आप, आपको हर हफ्ते डॉक्टर स्कोर करेगा, देखेगा।

0: सबसे खराब स्कोर 6 होता है और सबसे अच्छा स्कोर 0 होता है।
1: अच्छा,
0: तो जैसे जैसे बच्चे का प्लास्टर लगता है और पैर सीधा होता चला जाता है, 6 से 5 से 4 ऐसे पहुंचता है। और उसके पश्चात जो एडी का जो है, कई लोग डरते हैं, ऑपरेशन नहीं कराते हैं, जो छोटा वाला जो बगैर टांके वाला एक ऑपरेशन है वो भी अहम है।
1: अच्छा।
0: वो सुन करके होता है, बेहोश करके नहीं होता, सुन करके होता है। कुछ बच्चों में बेहोश करना पड़ता है, वो प्रॉब्लम वाले बच्चे होते हैं, आमतौर पे सुन करके होता है। और वो जो है ओपीडी में ही हो सकता है या माइनर ओटी में ही हो सकता है, और उसका टांके नहीं लगते और सिर्फ छोटी सी बैंडेज लगती है और कुछ नहीं लगता। और वो जरूरी होता है, 90% बच्चों में जरूरी होता है।
1: अच्छा,
0: ये उससे नहीं डरे, वो सर्जरी के गिनती में नहीं आता।
1: अच्छा, वो सर्जरी में नहीं आता है।
0: वो सर्जरी में नहीं आता, केवल एक नस होती है, बहुत टाइट होती है, उसको काटना ही पड़ता है और उससे पूरा पैर सही हो जाता है।
1: ओके, चलिए।
0: तो 6 प्लास्टर के बाद ये जो माइनर सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट होती
1: है। क्योंकि अभी आपने कहा सर्जरी नहीं करनी है, तो
0: हाँ, नहीं, वो मामूली सर्जरी है, वो जरूरी होती है, वो जरूरी होती है, वो सर्जरी की गिनती में नहीं आती, उसमें टांके भी नहीं लगते।
1: अच्छा अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, गुजरात से हमें एक मैसेज लिखा है, लिखने वाले ने अपना नाम सेसिल लिखा है। इन्होंने लिखा है कि ये बताइए इलाज में खर्च कितना आता है और क्या ये मुफ्त भी हो सकता है कहीं पे?
0: ये जो है हमारा जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में, जहां जहां हमारा सरकारी मेडिकल कॉलेज है वहां क्योर का इंटरनेशनल इंडिया ट्रस्ट एक निजी संस्था है जिसके साथ पार्टनरशिप चल रहा है, काफी जगह में, गुजरात में भी काफी डिस्ट्रिक्ट्स में भी है जहां पे ये चल रहा है। और ये पूरा इलाज मुफ्त होता है, उसमें जो जूते मिलते हैं, और 5 साल तक जूता चाहिए होता है, बच्चा बढ़ता है तो जूते भी चाहिए होते हैं उतने सारे। हमने देखा है कि 5 साल तक 8 या 9 जूते बदलने पड़ते हैं।
1: अच्छा,
0: 8 या 9 जूते,
1: जी, साइज चेंज होता है।
0: काफी लोग गरीब होते हैं, खरीद नहीं पाते हैं, तो वो छोड़ देते हैं, फिर वापस टेढ़ा हो जाता है, फिर उसको ठीक करना मुश्किल होता है। तो इसलिए जरूरी है कि जूते 5 साल तक पहनेंगे, और जो 8 साइज चेंज करने हैं वो भी, हमारे साइज है 4 से 24 तक साइज आते हैं जूतों के, वो हर बच्चे को जब भी पैर जूते के लिए बड़ा हो जाता है तो हम चेंज करते हैं। तो ये जरूरी है, तो सब जगह ये हम जहां तक फ्री है, प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा देके होता है, लेकिन जहां तक सरकारी है, जहां तक मैं जानता हूं, जहां जहां क्लब फुट के क्लिनिक लगे हैं, कोशिश रहती है कि इलाज तो फ्री है और ब्रेस भी हम फ्री देने की कोशिश करते हैं।
1: जी, तो आज हम बहुत सारी हमने जानकारी डॉक्टर मैथ्यू से प्राप्त की है कि क्लब फुट क्या है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, पहचानना, जल्दी इसका पहचान कर पहुंचना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे श्रोता, जो मैं कह रही हूं, अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, देर से जुड़ रहे हैं और प्रश्न कर रहे हैं। आप चलने से पहले, इतना समय हमारे पास है कि आप शॉर्ट में हमें बता दें कि ये ट्रीटमेंट जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, जिससे कि हमारे लिसनर्स ने अगर कुछ छोड़ दिया हो तो वो समझ पाए उसको।
0: हाँ, तो जो अगर बच्चे को जन्म के 5-6 हफ्ते के अंदर अंदर हमने पकड़ लिया, उसको हर हफ्ते प्लास्टर लगता है, और एक तरीका है जिसको पॉन्सेटी ट्रीटमेंट मेथड बोलते हैं, उससे प्लास्टर, उस विधि से प्लास्टर लगाते हैं। इसकी खासियत है कि जांग से पंजे तक पूरा पैर और घुटने को 90 डिग्री तक मोड़ के रख के प्लास्टर लगता है, और हर हफ्ते इस प्लास्टर को बदलते हैं। और प्लास्टर लगाते वक्त डॉक्टर थोड़ा सा उसको थोड़ा सा मालिश करते हैं, मसाज करते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए, सीधा करने के लिए मैनिपुलेट करके फिर प्लास्टर लगाते हैं। हर हफ्ते ऐसे 5 प्लास्टर लगते हैं, कई बार 6 लगते हैं। उसके बाद एक छोटा सा कट वाला सुन करके ऑपरेशन होता है, और उसके बाद 3 हफ्ते का प्लास्टर लगता है, और यानी कि 6 से 9 हफ्ते के अंदर अंदर ये पैर सीधा हो जाता है, और सीधा उसको रखने के लिए जूते की जरूरत होती है, जो दो पैर जुड़े हुए, जिसमें बीच में डंडा हो, बीच में बार हो, जुड़े हुए पैर होते हैं, वैसा वाला जूता होता है, वो जरूरी होता है। 3 महीने के लिए 23 घंटे के लिए, 1 घंटा सफाई के लिए, बाथरूम के लिए, और उसके पश्चात 5 साल तक जब भी बच्चा सोए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये जूता जरूर पहनना है। अगर छोड़ देंगे तो वापस आएगा, देर से आएंगे तो बच्चे की हड्डी टेढ़ी बनती है, और अगर हड्डी टेढ़ी बन गई तो उसको सही करने में ऑपरेशन वगैरह की जरूरत पड़ती है, उससे बचना है।
1: मैसेजेस अभी भी हमारे पास आ रहे हैं। कर्नाटका से हमें प्रिस्किला जी ने लिखा है कि क्या इलाज के बाद फिर टेढ़ापन लौट सकता है? तो बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने अभी बता दिया है कि किस स्थिति में अगर छोड़ दिया जाए तो वापस आ सकता है। और बहुत सारी बातें आज, बहुत नई चीजें हमें पता चली हैं। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ आने से हमारे बहुत सारे श्रोता सजग हुए होंगे, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। और बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ रहे हैं जो धन्यवाद दे रहे हैं डॉक्टर साहब की, इस बीमारी के बारे में हमें नहीं पता था।

0: आपने बहुत विस्तार और बहुत स्पष्ट और बहुत अच्छे शब्दों में हमें समझा दिया है इस बीमारी के बारे में, तो वो आपको धन्यवाद दे रहे हैं। तो हम भी अब धन्यवाद देंगे, आप हमारे साथ रहे और हमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। क्लबफुट कॉजेज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, आज इस पर बात हुई। हमारे विशेषज्ञ रहे डॉक्टर मैथ्यू वर्गिस, आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल 30,000 दिल्ली में। और डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए।
1: धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए और आप सुनने के लिए।
0: और अब स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: मौज मस्तियां।
1: ओए होए, प्रोग्राम तो एंजॉय कर रहे हो। हेलो जलंधर, अपनी दोस्त ते होस्ट आरजे रिया दे नाल। ते आज दा जिहड़ा प्रोग्राम है ना हेलो जलंधर, इहदे विच ना आपां अज की गलबात करनी है, क्योंकि हर एक हेलो जलंधर प्रोग्राम दे विच आपां कोई ना कोई नवां टॉपिक लैके आने हां तुहाडे किस्से कहानियां सुनन वास्ते, ते कुछ किस्से कहानियां मैं अपने भी सांझे करदी हां। ते अज आपां गलबात करनी आ कि दस दवां कि ना दसां, पहले आ गाना सुनो माड़ा जिहा, फिर दसदी हां।

0: बाल तो देखो,
1: अरे रंग लगाया
0: इसके बाल तो देखो,
1: अरे झूठे मूठे
0: इसके दांत तो देखो।

0: पाता है ना रात को सोए।
1: I think Kranti has been bowling really well, and I think these kind of pitches suits her. So we just thought, let's bring her back.
2: Does recent form count for anything? Because you won a series in Australia in this T20 format as well, that semi-final as well. How much do you bring in of confidence into that?
1: It's a fresh day and fresh mind, and definitely those games given us a lot of confidence. And today's the game to just enjoy ourselves.
2: Okay. We're in London, but it feels like a home match.
1: Yes, definitely. I think weather is quite suiting us, and let's just enjoy here.
2: All the best today, Harman.
1: Thank you.
2: So if I get you to come in, if it had fallen your way, what would you have done?
3: We're going to have a bowl, so it's worked out well.
2: There you go. Happy days. Phoebe Litchfield, we've heard in the press that she's back into the side. Any other changes, and who's out for her?
3: Yeah, Phoebe's is back in, and Alana King's missing out today.
2: And why is that? Because the two leggies have worked well for Australia so far.
3: They have, yeah. I think it's just conditions and matchups today. Kingy's bowled really well this tournament, and she can still play a massive role for us moving forward over the next week or so. But yeah, excited to have Phoebs back.
2: It's been building nicely for Australia. It feels as if it's a bit of a final more so than a round game.
3: It does. It's really exciting. We've had a bit of a break before this game, so it's built up really nicely for us. And
2: Enjoy all the magic of the home of cricket.
3: Yeah, we will.
2: All the best, Soph.
3: Thanks, Jonesy.
2: Well, India have won the toss today, and they'll be batting first in this crunch match.
4: हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता है और भारत पहले बल्लेबाजी करेगा। सौमित्रो, हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं रहा है, कैसे देखते हैं इस निर्णय को आप?
5: पहले तो दोनों कैप्टन खुश है, हरमनप्रीत बैटिंग करेंगे और इंडिया बैटिंग करेंगे और वो बॉलिंग करेंगे। और टीम चेंजेस में आपको दिख रहे हैं कि फिबी लिचफील्ड को वापस आना ऑस्ट्रेलियन टीम में बहुत इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज शी इज गॉन एन अमेजिंग स्ट्राइक रेट। तीन मैचेस नहीं खेले हैं वो अभी तक, सो ही एब्सोल्युटली फ्रेश, इंजरी थी, नहीं पाएंगे, सो दिस इज अ बिग मैच फॉर हर और शी कैन बी द इम्पैक्ट फैक्टर। जैसे आपने बोला, ये इस तरह का मैचेस में जैसे 170-180 जो रिकॉर्ड्स जो दिखता है लॉर्ड्स में ऐसा ही, बट इफ इंडिया कैन स्कोर 170-180 दैट विल बी अ वेरी गुड स्कोर। हरमनप्रीत का बैटिंग इज लार्जली बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रांग इन आवर बैटिंग, ऑल्दो इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन आवर स्कोरिंग स्पेशली मिडल ऑर्डर। और हरमनप्रीत को आज शी कमिथ द मैच, कमिथ द वुमन, शी हैज़ टू बी द वुमन बिकॉज इस तरह के मैचेस में अगेन ऑस्ट्रेलिया, इफ दिस वन पर्सन दैट ऑस्ट्रेलिया फियर्स इज हरमनप्रीत। और इस मैच में उनको आज कैप्टन्स नॉक खेलना है कि 85 रन्स इन फोर मैचेस इज नॉट व्हाट द हरमनप्रीत वी नो अबाउट। तो आज का मैच उनके लिए बहुत ज़रूरी है और सारे टीम के लिए ज़रूरी है, मगर प्रेशर नहीं, शी यूज द वर्ड एन्जॉय, लेट्स सी हाउ मच एन्जॉय।
6: रविंदर, हमने तब्दीलियों का जिक्र किया।

0: आज के इस मुकाबले में भी एक बदलाव है। नंदिनी के जगह पर क्रांति गौड़ को मौका मिला है। पेस डिपार्टमेंट में खास करके स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिली है।
1: बिल्कुल, जिस हिसाब से ये जो बॉलिंग अटैक चल रही, बॉलिंग अटैक था उसमें बिल्कुल चेंजेस, हर मैच लगभग हर मैच में चेंजेस चल रहे थे, तो ये एक्सपेक्टेड ही था। क्योंकि विकेट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सीम लग रहा है, सीम हो रहा है जैसे बताया हरमनप्रीत ने, तो उनको लगा क्रांति गौड़ इसमें शायद ज़्यादा परफॉर्म कर पाएगी। लेकिन जो जो मेन जो इनका अटैक रहेगा वो चरनी के आसपास ही घूमेगा, क्योंकि चरनी बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है और वो एक तरह का मैच डिसाइड करती है कि मैच किस तरफ पड़ा, मैच का पड़ा किस तरफ मुड़ता है।
2: ख्याति, अगर दोनों टीमों की बात करें तो 38 T20 मुकाबले दोनों टीमों के बीच हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 27 जीते हैं, भारत ने 10 में विजय प्राप्त की है और एक मैच बेनतीजा रहा है, परिणाम नहीं निकला है। जब आप ऑस्ट्रेलिया के सामने होते हैं और ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हम इसे कह सकते हैं, किस तरीके का टोटल होता है? क्या जो टीम मीटिंग टॉस जीतने के बाद होगी उसमें इस पर चर्चा होगी, चूंकि आप कोच भी रह चुकी हैं डोमेस्टिक सर्किट में, या फिर ये होगा कि पहले पावर प्ले देखते हैं उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे?
3: डेफिनेटली उन्होंने डिस्कस तो किया होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि विदाउट एनी टारगेट दे विल गेट इन टू द पिच डायरेक्टली, बट आई थिंक इट विल बी कॉन्टेस्ट फ्रॉम स्टार्ट, बॉल टू बॉल कॉन्टेस्ट होगा बिटवीन बोथ द टीम्स, बैटर टू बॉलर एंड बॉलर टू बैटर, एंड आई थिंक 160-170 शुड हैव बी अ गुड स्कोर, दे मस्ट हैव डिस्कस दिस थिंग, otherwise you will not give the cushion to your bowlers, you have to give the cushion to your bowlers also. आपको अगर उस तरीके की गेम खेलनी, आपको हमेशा सेट होने, अगर सेट होते आपके बॉलर्स या आपके बैटर्स डेफिनेटली आई थिंक तब आप ये सोच सकते हो कि वहाँ जाके आप पावर प्ले देखें, लेकिन अभी तक कुछ भी सेट नहीं है पावर प्ले में। एवरी टाइम इनका जो स्कोर है उस तरीके का नहीं चल रहा कि जैसा एक्सपेक्टेड है, जो द वे वी ऑल्सो टॉक टू द प्लेयर्स कि आपका 6 ओवर्स में 50 रन हो इस तरीके से, बट आई थिंक एक 160 का स्कोर एक पार, आई थिंक इट विल बी अ गुड स्कोर।
0: Sumitro, heading into the World Cup, the concern was more around the openers because they were struggling in that series against England. But now it's more around the wobbly middle order.
4: Absolutely, because if you see, first of all, you have to forget what you've done in the last 4 matches. Especially, you know, when you play in Netherlands, and they are more like warm matches with all regards to those teams. But the point, today is the big match. Or agar aap is level pe matches dekhe, India have always lost these kind of matches against Australia. But it doesn't mean, again, history does not mean anything else. But the point is this, aaj agar aap dekhega, who bats at number 3, who bats at number 4, where does Harmanpreet bat? Up 6, she has batted at 6, she has batted upper. So ye, India have got a very unsettled look about them, which is very, very striking for a team that has won a World Cup. And the coach at the core of the team remains the same. The coach remains the same. In spite of that, we still don't know. आपने जैसे पहले बोला कि 16 players हम 4 matches में खिला दिए, that means that's not a good sign. Plus, you know, there are other concerns, fielding concern. But I would like to see who bats at number 3. I'm assuming कि South Africa, which was the biggest match so far, so who bat, Yastika batted there. She's a left-hander और उनके पास leg spinners बहुत हैं. शायद यही बैटिंग देखेंगे, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी वेयर डज हरमनप्रीत बैट, हाउ मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्स, बिकॉज वेन द कैप्टन टेक्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शी स्कोर्स द रन्स, आई थिंक दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। और ओपनर्स जैसे आपने कहा, दे आर फेयरली ऑलराइट, स्मृति मंदाना इज अमंग द टॉप स्कोरर्स, शिफाली इज गॉट रन्स, बट येस द परफॉर्मेंस ऑफ द मिडल ऑर्डर विल बी वेरी वेरी क्रिटिकल।
2: रविंदर, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, जेमिमा की भी फॉर्म इस पूरे टूर्नामेंट में सवालिया निशान पर रही है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यास्रिका भाटिया और भारती फूलमाली में भी चर्चा हो रही थी कि शायद उनको इस मैच में वापस लाया जाए प्लेइंग 11 में, लेकिन यास्रिका के साथ गई है हरमनप्रीत कौर की टीम। अगर हम बात करें किस तरीके का टीम में माहौल होगा इस समय, चूंकि नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 कहीं ना कहीं अनसर्टेन रहा है इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया का।
1: बिल्कुल अनसर्टेन रहा है, तभी ये मैच, ये जो टूर्नामेंट है इस कंडीशन में आया है। आप देख रहे हैं कि 15-16 लोग खेल रहे हैं नॉर्मली, अगर आपकी एक कॉम्बिनेशन बना रहता है तो 11-12 लोगों में ही काम टूर्नामेंट पूरा चल जाता है। बहुत कम होता है कि आप 15-16 लोगों में खेलिए। बैटिंग में दिक्कत रही है अब इसमें भी, लेकिन जो बैटिंग लाइनअप है ऑन पेपर तो बहुत स्ट्रांग है, पर ये है कि अब उस स्ट्रॉन्ग को उसको अब एग्जीक्यूट करना है, और इससे आज से बड़ा ये मौका कभी मिल नहीं सकता। आज इनको पता है डू और डाई है, आज नहीं करेंगे तो फिर आप पैकिंग करेंगे।
0: ख्याति, इन द गेम अगेंस्ट बांग्लादेश दो जेमिमा गॉट सम रन्स, बट इन द 3 प्रायर गेम्स शी स्ट्रगल्ड। इज शी समबडी हु वांट्स दैट रोल क्लैरिटी, दैट पोजीशन क्लैरिटी?
3: सी डेफिनेटली, अगर आप ऋचा

0: की बैटिंग देखेंगे तो उनको हमेशा थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है. अगर आप उसको अप द ऑर्डर भेजेंगे डेफिनेटली शी कैन शो यू गुड परफॉर्मेंस एंड शी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स अ गुड टोटल. बट उसके अगर आप बार बार डाउन चेंज करेंगे, इतने प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं उसमें भी आपको समझना चाहिए कि उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है. और जैसे ही उसको टाइम मिलता है, लास्ट वर्ल्ड कप में भी आपने देखा होगा वनडे वर्ल्ड कप था, जैसे ही उसको टाइम मिला एंड शी गेव गुड कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द गुड टोटल. इतना तो आई थिंक अब सेम कोच है इतने साल से, तो सेम मैनेजमेंट है, इतना तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग अब तक हो जानी चाहिए अपने प्लेयर के लिए.
1: आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20 में हमारे साथ जुड़ चुके हैं पहले श्रोता, बहुत बहुत स्वागत है आपका.
2: नमस्कार भैया.
1: नमस्कार, अपना परिचय
2: दीजिए. नमस्कार भैया, मैं कम से कम 50 साल से कमेंट्री सुन रहा भैया
1: जी.
2: जब कमेंट्री सुनने का था, देखने का नहीं था, तब अपना इंडिया टीम एक गलती कर रही है दिख रहा साहब. मेरे को बैटिंग पहला लेने से पहले फील्डिंग लेना बहुत अच्छा दिखता था साहब. चांस जीतने का ज्यादा साथ रहता है मैडम. कम से कम एक 200 रन तो आज बनाना कंपल्सरी है और एक कैच भी नहीं छोड़ना अपन लोग. कैच अगर पकड़े मैच जीतने वाला था, नहीं तो अगर कैच मैच हार जाएंगे इंडिया.
1: सौमित्र, यहीं से इनकी बात को आगे बढ़ाते हैं. तीन में से एक कैच भारत ने ऑन एन एवरेज इस टूर्नामेंट में छोड़े हैं, जो बड़ा कंसर्न है कहीं ना कहीं फील्डिंग साइड के नजरिए से देखें. पूरे टूर्नामेंट में बहुत सारे कैचेस छूटे हैं, लेकिन टीम इंडिया को आज के मैच में बहुत ध्यान देना पड़ेगा.
3: बहुत जरूरी है. चार मैचेस में 11 कैचेस, एक मैच बांग्लादेश के साथ पहला 5 ओवर में 4 कैच. मेरे हिसाब से सबसे क्रिटिकल कैच जो इसने छोड़ा वो है मैरिजॉन कैप का कैच. वो जो मैच 81, शी हैड 3 लाइव्स. कैन यू इमेजिन इन T20 जहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर इज वर्चुअली जीरो, वी हैव डन लाइक दिस टुडे. बट अगेन यू नो व्हेन जब हम रिपोर्टर्स लोग हमारे क्रिकेटर्स के साथ बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि इसको पता है कि इसमें ऐसा होता है. क्रिकेट में जो क्रिकेट खेले हैं उनको भी पता है. आज तो सिर्फ नर्व्स को मैनेज नहीं करना पड़ेगा आपको, पूरा मैच में 40 ओवर्स में अपना How cool you are. She has used the word enjoy. मैं आप अगर आपने सुना होगा, enjoyment can only come if you're cool within and you have the composure to play such a big match. वो तो पहले ही पता चल जाएगा कि जब बैटिंग करेंगे हमने पावर प्ले में कैसा लिया. Don't forget that Australia are very very hungry and they have made one very important change that can be a deciding factor. चलिए देखते हैं आगे क्या होता है.
4: और रविंदर, ये बस कैचेस ड्रॉप होने की बात नहीं है, फील्डिंग में भी फंबल्स देखने को मिले. इनफैक्ट बांग्लादेश के विरुद्ध इनिंग्स की आखिरी गेंद पर कप्तान हरमनप्रीत खुद फील्डिंग के टाइम बॉल को ठीक से पकड़ नहीं पाई, तो वो जो जिटर्स हैं वो ऑलमोस्ट इन्फेक्शियस लग रहे हैं.
5: देखिए, ये कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कैचेस का. वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आपकी क्या प्रिपरेशन है, आपके कोचेस क्या कर रहे हैं. एक राधा यादव जो कि इंजर्ड थी, उसके हाथ में इतनी मोटी बैंडेज थी, उसको आपने अंदर भेजा और तीन जो प्लेयर थे वो बाहर बैठे थे और उसके हाथ से कैचे छूट रही है, वो पकड़ नहीं पाई. फील्डर वो अच्छी है, उन पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस समय उनकी हालत, एक इंजर्ड प्लेयर को आप अंदर लेके आ रहे हैं और वो आप 20 ओवर के मैच में तीन कैचेस छोड़ेंगे तो कैसे मैच जीत सकते हैं आप. कोई एक्सक्यूजेज नहीं है देखो फील्डिंग का. फील्डिंग पर अगर आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, कोई लोकल मैच तो खेलने नहीं जा रहे, तो मुझे तो इसमें पूरा मैनेजमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है कि आप लोगों ने क्या प्रिपरेशन करी उनके लिए.
1: फर्स्ट बॉल 20 के इस कार्यक्रम में एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं. नमस्कार, स्वागत है आपका.
6: जी सर नमस्कार, और मेघा जी को भी नमस्कार, आप सभी को नमस्कार. गुड इवनिंग.
1: गुड इवनिंग, बताएं आप क्या जानना चाहते हैं.
6: जी मैं मध्य प्रदेश सागर से विपिन कटारे बात कर रहा हूं सर.
1: जी विपिन जी,
6: सवाल सर मेरा ये था कि जैसे इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो क्या 180 स्कोर अच्छा रहेगा अगर बना लेती है टीम इंडिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी है. और दूसरा सवाल ये था कि क्रांति गौड़ को खिलाया गया है तो वो उनकी पहले भी बॉलिंग काफ़ी अच्छी नहीं रही है और उनको ज़्यादा ओवर भी पहले नहीं मिल पाए हैं, तो उनके बारे में जानना था. और फील्डिंग के बारे में तो आप लोग चर्चा कर ही रहे हैं, जो कि आज इसकी नौबत भी यही आई है कि हम बाहर होने की स्थिति में हैं.
1: इन्होंने 180 के टोटल की बात की. भारत और ऑस्ट्रेलिया T20 विश्व कप में जब भी आमने सामने आए हैं, भारत का सर्वाधिक टोटल 167 रन रहा है, जो 2018 और 2023 में टीम इंडिया ने बनाया है. 167 से आज पार पाना चाहेंगे ख्याति?
0: डेफिनेटली, आई मीन वो तब बनाया था और उसके बाद से जो टीम ने इम्प्रूवमेंट की है तो आई थिंक और एक्सपेक्टेशंस हाई होगी. और ये जो आज मुकाबला है, यहाँ से आपको ऑब्वियसली और आगे अगर आपको जाना है तो आपको यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाना होगा और सबकी कंट्रीब्यूशन इज़ रिक्वायर्ड. और आई एम श्योर उस बारे में बात बहुत ज़्यादा हुई होगी मैनेजमेंट में. एंड लास्ट वर्ल्ड कप में भी, ODI वर्ल्ड कप में भी इस बारे में डिस्कशंस चल रही थी कि किस तरीके से आप कंट्रीब्यूट करें एंड

0: बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी, जो मुझे बाद में पता चला कि जिस तरीके से अमोल मजुमदार ने बात करी और मोटिवेट किया प्लेयर्स को, उनमें ट्रस्ट दिखाया, तो आई थिंक ये सेम सिचुएशन है, इस बारे में बात हुई होगी, एंड आई थिंक दैट दे'ल बी सक्सीडिंग इन दिस.
1: Soumitra, ever more important to be imposing because of how deep Australia bat and how attacking they themselves are.
2: एक चीज श्रोता को बताना जरूरी है कि टॉप 10 बैट्समैन, टॉप 10 बॉलर्स में एक भी ऑस्ट्रेलियन नहीं है, फिर भी ये अनबीटन है. हाउ इज दैट पॉसिबल? इट्स अ टीम गेम नॉट द प्ले. रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट इन मैन टू मैन शायद एक्सपीरियंस वाइज ऑस्ट्रेलियंस आर मच हायर. बेथ मोनी, एलिस पेरी, एश गार्डनर, फैंटास्टिक. आप देखिए, बट इंडिया इज नो शॉर्टेज ऑफ एक्सपीरियंस. But experience counts for nothing if you don't score. Experience counts for nothing if you don't hold your catches. Experience counts for nothing if you don't take wickets. But the point is this, it's going to be a great contest. And as I said that, you know, it is all in the mind. Aapne jo sawal kiya uske liye, India have to take over by over. Ye nahi ki rush karke humne itna set banana hai. Power play, I think you have seen the first few matches where India scored 10 and over. That will be an idle start. But don't forget that Australia have a very good bowling lineup, and they know, and their fielding is amazingly good. So, you know, nothing can be predicted. I mean, just across the Atlantic, we are seeing another World Cup. उतने जिस तरह से के ये सब teams खेल रहे हैं, Ecuador, Germany को हरा रहे. Nobody can go in with a set plan. It is what you do at that moment and how you perform.
3: जी हाँ, थोड़ी बल्लेबाजी की बात करते हैं. रविंदर स्मृति मांदना भारत की तरफ से सबसे सफल बैटर हैं इस वर्ल्ड कप में, 4 मुकाबलों में 167 रन. लेकिन मैचअप की बात करें तो एश गार्डनर ने उन्हें 31 T20 मुकाबलों में 10 बार आउट किया है. कैसे देखते हैं इस मैचअप को?
4: देखिए, ऑस्ट्रेलियंस हैं, उनका जो होमवर्क है वो बहुत तगड़ा है. वो हर प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, सबसे बड़ी बात. और बाकी ये बाकी एक दूसरे के साथ उनको पता है कि बैटर्स हैं. इंडियन की टीम जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, हरमनप्रीत है, शेफाली है और स्मृति है, इनके ऊपर उन्होंने जरूर होमवर्क कर गया होता है. अब देखिए, पहले जितने भी T20 होते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही उनकी विक्ट्री रही है. देखिए, डिपेंड करता है कि आपका स्कोर 160-160 वो नहीं होता. आप 160 में भी जीत सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप फील्डिंग करते हैं उस हिसाब से अगर आप 180 भी बना दें, 190 भी बना दें, तब भी आपका जीतना मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए. वो प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत ही प्लान तरीके से खेलने आते हैं उनके. देखिए, किसी भी बता रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया कि टॉप 10 में कोई भी नहीं है, लेकिन वो टीम वर्क है सारा. नीचे वाले भी जाके बैटिंग कर रहे हैं, 8-8 प्लेयर बॉलिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा. और ये 160-170 रन तो बनाएं, अगर बनाते भी हैं, लेकिन उसके बाद आपको पूरे फील्डिंग जो जज्बा दिखाना पड़ेगा उसी का जीत पाएंगे. नहीं तो आप 180 रन करके भी जिस जो फील्डिंग कर रहे हैं उसमें भी कोई फायदा नहीं होगा.
1: Now, Khyati, from one opener to the other, Shefali Verma hadn't scored a half century in T20 World Cups, though she'd featured in multiple of those since 2020. But this edition got two of those. Do Australia would like to exploit her weakness against short balls?
0: Yeah, definitely. I mean, she's known for big games. But it's yet to come. And let's see. I mean, if they might have done homework for her as well, and they know that she's bad with the short pitch balls and all. But even Amol must have spoken to her and must have told her weakness and their strength. I think they'll come with good homework. But let's see how good she can execute on the ground today.
2: I want to add to what she said that, you know, these teams have played 37-38 T20 matches, internationals. Isse pehle India won a T20 series against. Most of the top players are not unknown to each other. Like, if you notice, all the champion sides, regardless of whether it's tennis or badminton or kuch bhi dekhe, your top 10 jo players hota hai, they know each other. It's on the day that's how you perform, right? It's on the day how you. So, you can only guess ki Shefali A karenge, Ashley Gardner can do this and all that. That's history. It's exactly what you do in the next 1.5 hours at lots.
3: जी हाँ, बिल्कुल. कल प्री मैच कॉन्फ्रेंस में स्मृति मांदना ने कहा भी था कि हमारे प्लेयर्स बिग बैश में खेलते हैं, उनके प्लेयर WPL में खेलते हैं, तो बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे को जानते हैं. इस बीच फर्स्ट बॉल 20 में एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं. नमस्कार, स्वागत है आपका.
5: आनंद जी, आपको सबको नमस्कार. आपका रेगुलर श्रोता कारण हरगिज लीलाधर चोपड़े बात कर रहा हूँ. आनंद
3: जी नमस्कार.
5: नमस्कार. मेरा सर सवाल है कि हमारे पेसर

0: कॉर्नर के लिए तो हमारे पास में ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा हमारा भारत देश है कि जैसे गलियों में क्रिकेट खेली जाते वैसे महिला कम क्रिकेट खेलती है, वो तो वजह नहीं है। रविंद्र सर से मैं इस बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि पुरुषों में तो अब हमारे पास में बहुत प्रति के बॉलर है, लेकिन महिलाओं में ये जो समस्या क्या महिला कम भारत में क्रिकेट खेलती है इसका ये कुछ है इसके ऊपर, और बैटिंग देखिए थोड़ा गलत काम ऐसा लग रहा है। धन्यवाद।
1: तेज गेंदबाजों को लेकर बेंच स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं रविंदर।
2: देखिए बेंच स्ट्रेंथ है हमारे पास, अरुणिति रही भी रही है, रेणुका ने बॉल किया और क्रांति गौड़ हैं, लेकिन अब जैसे जैसे अब ये अब भारत में अब क्रिकेट वुमेन्स के लिए बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। अब तो देखिए लोकल डिस्ट्रिक्ट में लीग्स चल रही हैं उनके लिए, और अब तीन चार पाँच साल में जिस हिसाब से इनके ऊपर जो पैसा खर्च किया जा रहा है जो BCCI द्वारा, उसमें आपको बहुत ही जल्दी आपको और भी अच्छे और टैलेंट देखने को मिलेगा। छोटी छोटी जगहों से काफ़ी निकल के आ रहे हैं प्लेयर, में देख रहा हूँ लड़कियाँ भी काफ़ी निकल के आ रही हैं झारखंड से बिहार वगैरह से, तो ये आपको जल्दी थोड़े दिनों में और भी अच्छा टैलेंट देखने को मिलेगा आपको।
3: One of the reasons probably for Indian pacers struggling, easy conditions, and second, a lot of pace bowling all-rounders got injured ahead of the World Cup. Getting back to India's batting, Soumitro, Harmanpreet Kaur somehow hasn't looked in rhythm. There's no pattern to her dismissals, but she's been struggling to score runs fluently.
4: Absolutely, that you can see the lack of confidence can be seen in the way she has, the number of positions she has batted. If she was confident and she had the rhythm, then she would have perhaps batted in the top 4 or 5. Although, you know, she has enough batting power, but today is the day when she has to get her rhythm back. And against Australia, she's always scored the runs. She's always been the most valuable player. Unfortunately, all the 450s that she has scored in T20s have come against her. Whenever India have lost, shayad today is the day when the equation will change.
1: ख्याति, हमने बहुत बात की भारतीय टीम की, थोड़ी चर्चा ऑस्ट्रेलिया की भी कर लेते हैं, किस रणनीति के साथ वो इस मैच में उतरेंगे।
5: देखिए अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे उनका पेस अटैक काफ़ी अच्छा है, तो ये कॉन्टेस्ट होगा बिटवीन स्मृति मानधना एंड शेफाली वर्मा अलॉन्ग विद दीज आई मीन इन फ्रंट ऑफ दीज ऑस्ट्रेलियन बोलर्स और एशले गार्डनर एंड हरमन के उसमें, तो आई थिंक डेफिनेटली ये कॉन्टेस्ट कौन बॉल टू बॉल जीतता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज सर ऑल्सो सेड कि ये पूरा 40 ओवर्स लास्ट बॉल तक आप इस गेम को किस तरीके से खेलते हैं वो उस पर बहुत निर्भर करता है।
3: और वही एलिस पेरी भी रन बनाए पाकिस्तान के विरुद्ध, पहला T20 विश्व कप का अर्धशतक जड़ा, दो विकेट भी निकाले, तो उस मोमेंटम के साथ और भी आगे बुनाना चाहेंगे। रविंदर
2: बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ऑस्ट्रेलिया अनबीटन साइड है, देखिए अभी तक उनमें अभी ज़्यादा कुछ कमियां दिख नहीं रही क्योंकि अभी तक हारी नहीं टीम, जब टीम हारती है तभी आपकी कमियां निकल के आती हैं, जीत जाने पे सारी कमियां छुप जाती हैं। अगर उस दिन भी अफ्रीका के अंग्रेज मैच जीत जाते लास्ट में तो वो सारी राधा यादव को कोई याद भी नहीं कर रहा होता, आज भी इनको इसलिए याद करा जा रहा है कि उनकी मैच हार गई। तो ये डिपेंड करता है, कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है उनका, यही अब ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो एपिक जो राइवलरी है वो आज देखने को मिल रही है, डिपेंड करता है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, आप जो पहले बैटिंग करने जा रहे हैं अपने डिसीजन लिया अच्छा लिया रीजन पॉजिटिव रीजन है, क्योंकि इतने बड़े प्रेशर मैच में आपको पहले अगर आप रन बना देते हैं तो बढ़िया है, अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग करते 180 नंबर रन बनाते तो चेस करने बहुत प्रेशर होता, लेकिन बढ़िया आप 6 ओवर पहले संभल के लिए 40 रन का टारगेट रखिए, विकेट मत दीजिए आप, और उसके बाद धीरे धीरे इसको टीम अपना बिल्डअप करेंगे तो आप 20 ओवर में 180 के आसपास पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आपने लूज की विकेट शुरू में पावर प्ले में तब वापस आपको दिक्कत आ जाएगी।
1: सौमित्रो, हमने कई खिलाड़ियों की चर्चा की, लेकिन अगर आज भारत को बड़ा टोटल बनाना है तो ऋचा घोष को बहुत बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी लोअर मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि तीन ऐसे इस टीम में प्लेयर हैं जिनके पास बल्लेबाजी का अनुभव नहीं है, और T20 में टेल अगर की बात करें तो भारतीय टेल थोड़ी लंबी नजर आती है।
4: देखिए ऋचा घोष का नाम आपने जिक्र किया, बैटिंग कहाँ करेंगे, 4 नंबर में किया, 7 नंबर में किया, 6 नंबर में किया, आज कहाँ करेंगे, वही तो सवाल मैंने पहले भी पूछा है कि इंडिया का बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। एंड डोंट फॉरगेट देयर इज समबडी कॉल्ड दीप्ति शर्मा, शी इज लाइक द रविंद्र जडेजा ऑफ इंडियन टीम, कहीं पे भी बैट कर सकते, कभी भी विकेट ले सकते, मोस्ट बिजीएस्ट क्रिकेटर इन द इंडियन क्रिकेट टीम। तो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स कि यू कांट गो विद अ सेट प्लान, कोच साहब ने कहा ही है यू कांट गो विद अ सेट प्लान, यू कैन नेवर गो विद अ सेट प्लान, बट यू वुड एक्सपेक्ट दैट योर मेन प्लेयर्स विल स्कोर द रन्स, right? So what is a good score? Nobody knows. 160 perhaps. So there are a lot of questions, and that's the beauty of these contests like between India and Australia. You don't know. There are so many factors that you cannot control. What you can control is what you can do. Like, you know, he said maybe 40 runs in the 10 overs. Hold your wickets. So fascinating. I mean, that's why India, Australia, England, Australia, these are big matches, and big matches

0: You can't go with a plan. You play on the day, face the circumstances, play the conditions, and go on.
1: Talking about questions, at the start of the year, Sophie Molino was anointed the captain. There were question marks around her fitness, whether she'd be able to lead Australia during the World Cup. Not only has she shown herself to be fit enough, she's also delivered consistently 6 wickets in 4 games. Khyati.
2: Yeah, definitely. I mean, if you see that, like Litchfield also, they want to play against India because they have that hunger, and they still remember the ODI World Cup, and they were waiting for this game, and they will give their best for this game, and they are coming up with the best team, and I'm sure that she will deliver.
3: शेफाली वर्मा पर दबाव होगा रविंदर, चूंकि तेज तर्रार शुरुआत के लिए वो जानी जाती हैं, अच्छी फॉर्म भी दिखाई है, छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने पारियां खेली हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम बड़ा मुकाबला।
4: देखिए, शेफाली एक बहुत बड़ी प्लेयर है, इंपैक्ट प्लेयर है, वो जिस हिसाब से बैटिंग करती है, जैसे वीरेंद्र सहवाग वगैरह बैटिंग करते थे, अगर वो 6 ओवर में उनको वो रहती हैं, स्टार्ट देती हैं, तो उसके बाद अगर वो विकेट्स पे रहती हैं, तो ये मैच इंडिया बहुत पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि उनके जो पॉजिटिव अप्रोच है, उनकी जो बाउंड्रीज निकालना है, वो और इवन किसी भी प्लेयर्स के लिए उतना आसान नहीं, जितनी आसानी से शेफाली निकाल पाती हैं। शेफाली उनकी बल्कि ऑस्ट्रेलियंस की वेटलिस्ट में होंगी कि उनको पहले आउट करना चाहेंगे शेफाली को जरूर, वो क्योंकि उनको पता है शेफाली बहुत अग्रेसिव प्लेयर हैं, उनको जितना लंबा खड़ी रहेंगी उतना इंडिया के लिए बेटर रहेगा।
3: जी हाँ, बिल्कुल, शेफाली से उम्मीदें होंगी। लॉर्ड्स की इस ऐतिहासिक पिच पर एक मजबूत स्कोर सिर्फ स्कोर बोर्ड पर अंक नहीं जोड़ता, बल्कि विपक्षी टीम के मन में भी सवाल खड़े कर देता है। अब निगाहें होंगी भारतीय टॉप ऑर्डर की ठोस शुरुआत पर, मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी पर, और अंत के ओवर में तेज गति से रन बटोरने की क्षमता पर। फर्स्ट बॉल 20 में इतना ही। रविंदर जी आपका, ख्याति गुलानी आपका, और सौमित्र बोस आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: शुक्रिया,
4: थैंक यू।

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: T20 महिला विश्व कप जो की आज लॉस्ट ऑस्ट्रेलिया, और भारत के लिए यह मुकाबला काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का ये मुकाबला भारत को जीतना होगा अगर भारत सेमीफाइनल में अपना दाखला चाहता है। इससे पहले कि मुकाबला शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि आज की टीमें किस तरह से हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम खेल रही है उसमें खिलाड़ी हैं बैट मूनी, जॉर्जिया वॉल, एलिस पेरी, एशली गार्डनर, जॉर्जिया बेरफिन, एनिबल सदरलैंड, नेपोला कैरी, सोफी मोनिलू, लूसी हैमिल्टन, किम गार्ड और फीबी लिचफील्ड। और भारत की तरफ से जो टीम खेली जा रही है उनमें शामिल हैं स्मृति, शफाली वर्मा, यस्तिका भाटिया, हरमनप्रीत, जमीमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, राधा यादव, श्रीचरनी, रेणुका सिंह ठाकुर और क्रांति गौड़ को आज के इस मुकाबले में शामिल किया गया है। जिन्होंने अपने रेडियो सेट्स अभी ट्यून किए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि भारत ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, और पिच को अगर देखा जाए तो पिच पर घास है जो ये बताती है कि गेंद में गति और उछाल देखने को मिलेगी, और घास सूखी है जो ये बताती है कि बल्ले के ऊपर गेंद अच्छे से आएगा और रन ज़्यादा यहाँ पर बनने की संभावना। और मेरे साथ हैं अश्विन। नमस्कार अश्विन।
2: Thank you, Bhupendra ji. It was as you mentioned, it is a very important match from India's perspective. This is slated to be a kind of a quarter-final match where India, it's a do-or-die game for India. They need to win this match if they have to progress from here to play in the further in the journey of the World Cup. So this is being a very critical match for India, and as you mentioned, there's only one change for India, where Kranti Gowda comes in place of Nandini Sharma, and that's a good move because this match is going to happen at Lords, which will prefer the pace and the variable bounce, which is very important. So I feel that's a great change for Indian team that has happened in this match, and so we are all looking in very exciting times for Indian cricket, and.

0: are all set to prove and play the kind of cricket that Indian fans are looking for, Birendra ji.
1: और आरंभक बल्लेबाज के रूप में शफाली वर्मा और स्मृति इस समय क्रीज पर हैं और मुकाबला शुरू होने को है. शफाली वर्मा जो कि इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी फॉर्म में है, नीदरलैंड्स के विरुद्ध शानदार 55 रन की पारी उन्होंने खेली थी. विकेटों के चारों तरफ स्ट्रोक लगाए थे, 38 गेंदों में ये 55 रन उन्होंने बनाए थे और साउथ अफ्रीका के विरुद्ध भी 31 रन की शानदार पारी थी और बांग्लादेश के विरुद्ध भी अर्धशतक बनाया था. स्मृति मानधना इस समय स्ट्राइक पर और लूसी हैमिल्टन की ये पहली गेंद, बाएं हाथ की तेज गति की गेंदबाज लूसी हैमिल्टन जिन्होंने स्टंप्स के बीचों बीच गुड लेंथ पर ये गेंद डाली थी जिसे सीधे बल्ले से वापस गेंदबाज की तरफ खेला था स्मृति मानधना ने. लूसी हैमिल्टन एक बार फिर से ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद, सीधे बल्ले से ड्राइव किया मगर सीधा मिड ऑफ पर खड़ी फील्डर के पास, रन बनने की कोई संभावना नहीं. आरंभक जो बल्लेबाज हैं भारत के वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और पारी में अगर मजबूती बनानी है तो आरंभक जोड़ी से साझेदारी दरकार होगी भारतीय टीम को और इस बात को बखूबी जानती हैं ये दोनों बल्लेबाज शफाली वर्मा और स्मृति. स्मृति सामना करने के लिए तैयार. इस बार ये गेंद लेग स्टंप के बाहर फ्लिक कर दिया गया डीप फाइन लेग क्षेत्र पर. रन भागने का मौका स्मृति के पास, जब तक गेंद को फील्ड करके वापस थ्रो किया जाए एक रन भागने का मौका. भारत का खाता खुला, स्मृति एक भारत एक बिना किसी विकेट पर. लूसी हैमिल्टन जिनकी गेंदों में थोड़ा उछाल थोड़ी मूवमेंट देखने को मिली है, इन तीनों गेंदों में उन्होंने इन स्विंग डाली है स्मृति मानधना को और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इन गेंदों को खेला है स्मृति ने, जो ये बताता है कि पूरी तरह से आत्मविश्वास में फॉर्म में अच्छी बल्लेबाजी कर रही है. एक अच्छी साझेदारी की जरूरत रहेगी भारत को यहां पर. तीन गेंदों में एक रन. लूसी हैमिल्टन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी करती हैं, शफाली वर्मा अब सामना करेंगी. ओवर द विकेट लूसी हैमिल्टन की ये गेंद, ओवर पिच कवर ड्राइव किया मगर स्ट्रोक में ज्यादा जान नहीं, सीधी फील्डर के हाथ में गेंद जिसकी वजह से रन बनने की कोई संभावना नहीं. शफाली वर्मा ने ये पहली गेंद बल्ले के बीचों बीच लेते हुए खेली. शफाली वर्मा का बल्ला बुलंद है इस वर्ल्ड कप में, अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने, स्पिन गेंदबाजी के विरुद्ध काफी आत्मविश्वास से खेले हैं वो, विकेट के चारों तरफ स्ट्रोक खेले हैं और इस वर्ल्ड कप में उनकी बल्लेबाजी में ये देखा गया कि ज्यादा क्रॉस बैट से नहीं खेल रही हैं, विशेष तौर पर स्पिन गेंदबाजी के सामने वी शेप में स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया है. लूसी की अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ बैकफुट पर जाकर इसे कट किया बैकफुट पॉइंट क्षेत्र पर, जब तक अपनी बाई तरफ भाग कर गेंद को फील्ड करेंगी डीप बैकफुट पॉइंट से फील्डर, एक रन भागने का मौका शफाली वर्मा के पास. पांच गेंदों में दो रन भारत के.

0: Place with a soft hand back to the bowler and no damage done. So 1.1 over 3 runs without loss. Shefali Verma and Smriti Mandhana at crease. And as I mentioned, this is going to be a very, very important match for India if they have to progress further in the World Cup. And they need to do something which builds a platform. And then later on, when Jemima Rodrigues, Harmanpreet and Richa Ghosh comes in, that they give a platform to go. Legs delivery on the middle stump, slashes it down to boundary line, going in the area of deep mid wicket for 4 runs. What a great shot this has been.
1: Ye laga abha ka choka.
0: She actually got the ball quite early. There was a great movement, places herself in the middle and middles that ball towards the square leg boundary for 4. A lovely shot coming on from Smriti. That shows the confidence that she has. She's middling the ball really well and very calm headed. Gets the first boundary for India. India now 7 without loss. 1.2 overs. Here's Kim Garth for the third delivery. Goes farther from the umpire. Again, a short length delivery. Drives in the same direction and the same results again, a very, very similar shot, this one, and gets boundary for her.
1: Ye laga abha ka choka.
0: So two boundaries coming off two balls, that sets the Indian that they are not going to take anything lightly. Again, a similar kind of ball, positions herself, went on the back foot and drives it along the ground, and no chase possible for the fielders there. Got two boundaries, two valuable boundaries for India. India score moves on to 11. 1.3 overs, 11 without loss. If you look at the fielding position, there's one gully, point, cover, deep cover, mid on, mid off. This is the ball which she waited for it to play it. It's a soft hand, and by the time ball rushes to cover region, no damage done. Batsman still intact in her crease. It is Smriti Mandhana of 10 runs in 8 balls. Shefali at the other end haven't faced much balls today. She is just faced 2 balls and scored a single in that. 1.4 overs gone, 11 without loss, India. It needs to be seen that what intent they need to show. Again, went on the back foot, drives it nicely, but there's a good fielding there at the point region. And with that, nicely collected throw back to the wicketkeeper. And there's a kind of clapping between the Australians. They are boosting each other's confidence here. 11 for no loss. Second over in progress. So India starting cautious. There's nothing they are going to give away in there. Both the shots that they have played today, it's all along the ground that we could see. And that's what the coach Amol Mazumdar wanted from these two, to spend some time in the middle, see the ball nicely, and then they change shift the gears. This time on the leg side, there was a bad delivery, I would say. Glanced it down, she missed an opportunity to drive it, and that ends the over number 2. India 11 without loss.
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: लॉर्ड्स के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। आईसीसी टी20 मुकाबलों की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 53 मैचेस खेले हैं, 43 जीते हैं, 9 हारे हैं और एक मैच टाई रहा है। इस बीच लूसी हैमिल्टन अपने नए ओवर की शुरुआत करती हुई पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जिसे ड्राइव स्केयर ड्राइव किया शेफाली वर्मा ने, डीप कवर से जब तक गेंद को फील्ड किया जाए भागकर एक रन पूरा किया। भारत का स्कोर 2.1 ओवर के बाद 12 बिना किसी विकेट पर। और आईसीसी महिला विश्व कप टी20 मुकाबलों में अगर भारत की भागीदारी की अगर बात की जाए तो भारत ने अब तक 44 मैचेस खेले हैं, 25 जीते हैं, 19 हारे हैं। धन्यवाद जतिन सूद इस जानकारी के लिए। इस बीच लूसी हैमिल्टन की ये गेंद गुड लेंथ स्टंप के बीचों बीच, और स्मृति ने ये देखा कि हैमिल्टन की गेंदों में ज़्यादा गति नहीं है, तो इस बार वो कदमों का इस्तेमाल करके इस गेंद को ड्राइव करना चाहती थी, मगर गेंद से दूर रही, जिसकी वजह से हल्का सा धकेला उसे मिडॉन की तरफ, जहां पर फील्डर मौजूद, रन बनने की कोई संभावना नहीं। पिछले ओवर में स्मृति ने अश्विन जो दो स्ट्रोक्स खेले बैकफुट पर जाकर, जिस तरह से ऑन ड्राइव लगाए उन्होंने, क्या टाइमिंग थी उनकी, बड़ी खूबसूरत टाइमिंग के साथ वो स्ट्रोक्स खेले थे। इस बीच इन स्विंग गेंद अंदर की तरफ आती हुई मिडल और लेग स्टंप पर, जिसे सीधे बल्ले से मिडॉन क्षेत्र पर खेला गया बगैर किसी रन के, और कमाल की टाइमिंग से खेल रही हैं, और दोनों बल्लेबाजों की जो अप्रोच है उससे लग रहा है कि उनको मालूम है

0: कि उन्हें लंबा खेलना है, साझेदारी बनानी है और एक अच्छा लक्ष्य देना है ऑस्ट्रेलिया को। 12 भारत बिना किसी विकेट पर 2.3 ओवर के बाद। लूसी हैमिल्टन प्रभावशाली गेंदबाजी करती हैं। इस बीच शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया मिड विकेट क्षेत्र पर। फील्डर भाग रही है गेंद के पीछे, डाइव किया मगर रोक नहीं पाई। 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: स्मृति को मौका मिला और इस मौके को पूरी तरह से भुनाया उन्होंने। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैकफुट पर जाकर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इस गेंद को पुल किया उस क्षेत्र में जहां कोई फील्डर मौजूद नहीं था। स्क्वायर लेग पर खड़ी फील्डर ने हालांकि कोशिश की गेंद को रोकने के लिए मगर सफल नहीं हो पाए। एक चौका स्मृति और भारत के खाते में। 16 भारत बिना किसी विकेट पर 2.4 ओवर के बाद। इस ओवर में 5 रन आ चुके हैं, 2 गेंदे बाकी। स्मृति सामने है लूसी हैमिल्टन के। गुड लेंथ गेंद जिसमें ज्यादा गति नहीं थी, थोड़ा सा लहराव अंदर की तरफ आती हुई, सीधे बल्ले से इसे सुरक्षात्मक तरीके से खेला गया। किसी तरह का जोखिम नहीं ले रहे हैं अश्विन दोनों बल्लेबाज। वो जानते हैं कि विकेट को सुरक्षित रखना काफी जरूरी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बल्लेबाजी की जा रही है। अभी तक कोई भी हवाई स्ट्रोक दोनों बल्लेबाजों की तरफ से देखने को नहीं मिला है। इस ओवर की आखिरी गेंद। भारत को यह मुकाबला जीतना ही होगा क्योंकि साउथ अफ्रीका अपना मुकाबला जीत चुका है। लूसी की यह गेंद गुड लेंथ गेंद, ड्राइव करना चाहती थी, बीट हुई, भाग्यशाली रही कि बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लगा। 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत 16 बिना किसी विकेट पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली। जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: So that was a great start from India. Another boundary coming in from Smriti's bat in this over. So 3 boundaries for her in her brief score of 14 runs of 15 deliveries. Shefali Verma hasn't gotten much opportunity as of now. She's just faced 3 deliveries, scored a single. But now this over, she's going to be on strike after Smriti Mandhana was beaten on the last ball of Lucy Hamilton. Matchups we need to see. I was waiting for Ashley Gardner to come, and this time Shefali Verma goes over the bowler's head on the long off region for a beautiful, beautiful boundary. What a boundary this was from Shefali's bat.
1: ये लगा आभा का चौका।
6: We were waiting for this. Shefali was itching one to join Smriti Mandhana. She has scored 3 boundaries, and you can see that there's a kind of competition, Birinder Jain, between them this time again. Ashley Gardner, again the tossed up delivery, but played very carefully along the ground. The ball by the time rolls down to long on region, batsmen, both the batters have enough time to cross for a single, and that moves the team score to 21 without loss with 4 boundaries in this. So that's a cautious start, and all boundaries are coming along the ground. So that was a great sign for Indian team that they are not going to go anything in the air unless that ball's demands or invites them to come and launch it over the boundary. So 3.2 overs, 21 without loss. Smriti on 14 or 15 delivery, Shefali on 7. This time Smriti Mandhana again cautious, went on the back foot. There was a good length ball, went back and drives it down to the mid off region. So no damage done, 3.3 overs gone, 21 without loss, 4 boundaries of Indian. And Ashley Gardner's, if you look at matchup, she has actually taken Smriti Mandhana for cleaners. She has actually taken 10 dismissals against her. So there was a good matchup for Ashley Gardner and Smriti, and that makes Smriti more conscious. This time she drives, dances down the wicket, plays on foot, full toss, and enough time to cross for a single. So Shefali on strike, 22 without loss, 3.4 overs gone. This time Shefali again on the rise, picks it up and over the boundary for a sixer.
1: ये लगा आभा का छक्का।
6: This was outside the off stump, loose delivery, and Shefali is not going to give away anything on that. And she actually targets the loose delivery, and she was on to the target, launches it.
7: कि फरीदा जलाल जी जो तो बॉलीवुड दे विच अपना डेब्यू किया सीगा, उन्होंने राज कपूर जी की बॉबी मूवी देना, तो उस तो बाद उन्होंने सोचा कि वो फिल्म इंडस्ट्री में टाटा बाय बाय अलविदा कह देंगे। लेकिन राज कपूर जी ने क्या सीगा कि भाई जिहड़ा राज कपूर प्रोडक्शन है एक बारी जुड़ गया दोबारा उसनों सानू गुड

भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इस डीआरडीओ दियां लैबोरेटरियां ते इंडियन इंडस्ट्रीज पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी अज समुंदर तो लैके आसमान तक साडा भारत ज्यादा सुरक्षित ते आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून विच एक होर आयोजन होया जिस विच पूरी दुनिया भारत दे यत्नां नाल जुड़ी ते ए प्रोग्राम सी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया दियां 2500 तो ज्यादा थावां ते योग दे अनेकां वख-वख प्रोग्राम होए। साडे देश विच करोड़ों लोगों ने थां-थां ते योग प्रोग्राम विच भाग लिया। इस महीने अहमदाबाद विच आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इस विच भारत ने कुल 114 तमगे जीते। इन्हां विच 102 गोल्ड मैडल भी शामिल ने। भारत इस चैंपियनशिप विच मैडल लैण दे हिसाब नाल पहले नंबर ते रहा। मैं सारे जेतू खिडारियों नूं बहुत बहुत वधाई देना। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होंगे ने, अते जदों उस देश के लोग कोई संकल्प लेंदे ने तां कोई भी ताकत उन्होंने अपने टीचे तो हिला नहीं सकती। राष्ट्र निर्माण विच जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत वड्डी पूंजी है ते इस जन भागीदारी नूं असीं वार वार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पछम एशिया विच बनिया युद्ध दियां स्थितियां नूं वेखते हुए मैं देशवासियों नूं कुछ बेनतियां कीतियां सी। मैं कहा सी कि जित्थों तक संभव होवे कुछ समय दे लई गोल्ड सोना खरीदन तो बचन। लोगों नूं कहा सी कि विदेश विच छुट्टियां मनाउण तो बचन। मैं लोगों नूं कार पूलिंग नूं भी वधावा देण दी अपील कीती सी। मैं किसानों नूं कैमिकल मुक्त खेती दे लई, खेत बचाउण दे लई अते कुदरती खाद दा ज्यादा तो ज्यादा इस्तेमाल करन दी बेनती कीती सी। साथियों, मैं देश दे हर नागरिक दा आभारी हाँ कि मेरी अपील दा ना सिर्फ उन्होंने समर्थन किया सगों हर तरह नाल उस विच अपना सहयोग कर रहे ने। मैनु कई परिवारां ने सुनेहे भेज के अपने अनुभव सांझे कीते ने। किन्ने ही परिवारां ने तय किया है कि वह घर दे विआह विच इस वार सोना नहीं खरीदणगे। लोड़ पई तां पुराने सोने नूं रीसाइकल करके नवे गहने बना लैणगे। किन्ने ही लोगों ने सोशल मीडिया ते भी लिखा है कि किवें उन्होंने इस बार विदेश यात्रा नूं टाल दिता। साथियों, कार पूलिंग नूं लैके भी लोगों ने अनेक तजर्बे सांझे कीते ने। जो लोग हर दिन एक ही दिशा विच अपने अपने वाहनां नाल जांदे सन ओह हुण इकट्ठे जाण लगे ने। लोग हर संभव बस ते मैट्रो की वरतों कर रहे ने। इस नाल पेट्रोल ते डीजल की बचत हो रही है। इसे तरह देश के वख-वख हिस्सों विच कुदरती खाद की खपत वधण दियां भी खबरां आ रही ने। साथियों, मैनूं इस गल की खुशी है कि वैश्विक संकट का असीं भारती मिलजुल के मुकाबला कर रहे हैं। मैनूं विश्वास है कि जन भागीदारी की यही शक्ति सानूं मजबूती देगी, सानूं सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, साडे देश विच जन्मदिन, शादी विआह, परिवारिक प्रोग्राम होण दे नाल ही पूरे समाज का भी उत्सव हुंदा है। हर परिवार चाहुंदा है कि उन्हां दियां खुशियां दूजियां दे नाल सांझियां होण। लोग मेहमानां नूं तोहफे भी दिंदे ने। साथियों, महाराष्ट्र दे नांदेड़ विच एक परिवार ने अपनियां खुशियां वंडण दे लई अजिहा काम कीता है जो चर्चा का विशा बन गया है। इत्थे नांदेड़ दे बहादुरपुरा पिंड विच पेठकर परिवार रहिंदा है। इस परिवार ने सोचिया कि जेकर खुशी वंडनी है तां अजिही चीज़ दित्ती जावे जो मुश्किल समय विच किसे परिवार का सहारा बने। अपने घर विच विआह दे मौके ते इस परिवार ने पिंड दे लगभग 3500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति नूं 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिता गया। इस पहल के पिछे की भावना बहुत छूण वाली है। परिवार ने देखिया सी कि दुर्घटना तो बाद परिवारां नूं आर्थिक तंगियां का सामना करना पैंदा है। अजिहे समय विच एक छोटी जिही मदद भी बहुत वड्डा सहारा बन जाती है। साथियों, सरकार देश दे करोड़ां परिवारां तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत सिर्फ 20 रुपए के सालाना प्रीमियम यानी केवल 1 साल के 20 रुपए का प्रीमियम उस ते 2,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है।

का वर्ल्ड कप जो क्रेज है वो बहुत ज्यादा हाइप थे, लेकिन उस तो भी ज्यादा हाइप क्रेज है जी मैसी थे रोनाल्डो का। दोनों का कंपैरिजन था हमेशा तो ही होता रहा है, लेकिन भाई मैसी ने इस बारी फीफा 2026 दे विच एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है जी। 7 वर्ल्ड कप मैचों दे विच गोल करने वाले ओ पहले फुटबॉलर बन गए है। हालांकि अर्जेंटीना ने अपना जो मैच है जॉर्डन 3-1 तो जरूर हराया, लेकिन उस तो ज्यादा खुशी तो मैसी दे इस रिकॉर्ड नू लेके मनी जा रही है। उसी तरह रोनाल्डो ने भी सेम डे मैच जरा से वो खेलिया, तो पुर्तगाल ने कोलंबिया के नाल ड्रॉ खेल के अपनी जी सुपर 32 के विच क्वालिफिकेशन है उसको कन्फर्म कर देता है। तो अगर आप मैसी की गल वापस करिए तो दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए है जिन्होंने 7 वर्ल्ड कप मैचों के जो गोल है वह किए है। इस तों अलावा मैसी ने एक होर अनोखा रिकॉर्ड बनाया, मतलब 30 जून 2006 तो बाद वो पहली बारी इदा कभी होया कि उन्होंने स्टार्टिंग 11 दे विच टीम दे विच जगह नहीं मिली। जी हाँ, मैसी स्टार्टिंग 11 दे विच नहीं हुए, एज अ सब्सटीट्यूट वो इंट्रोड्यूस हुए थे। फ्री किक दे उत्ते उन्होंने गोल करके अपना जरा रिकॉर्ड बनाया, तो उन्होंने इस गोल की मदद के नाल ही अर्जेंटीना ने ब्लॉस स्टेडियम में खेले गए मैच में जॉर्डन 3-1 तो हराया। तो इस दे नाल ही अर्जेंटीना जी हैगी है ग्रुप चे टॉप करके नॉकआउट राउंड में पहुँच गई है। तो टीम ने अपने लीग स्टेज के अपने तीनों मुकाबलों के तीनों जितते, कोई ड्रॉ नहीं खेले, तो 9 अंक के नाल वो इस टाइम टॉप के उत्ते है। इस तो अलावा अलजीरिया और ऑस्ट्रिया जिहड़े हैगे आ उन्होंने भी 3 मैचों चो 1 जित 1 ड्रॉ ते 1 हार के नाल 4-4 अंक लैके अपनी जिहड़ी कन्फर्मेशन हैगी सुपर 32 वास्ते वो कन्फर्म कर दिती हैगी है। तो दस दे कि मैसी दे करियर दा 72वां गोल सीगा, ते अर्जेंटीना दे लई उन्हां दी है 12वां फ्री किक गोल सीगा। इस वर्ल्ड कप दे दूसरा फ्री किक गोल रहा। इस दे नाल ही पेले, रेविलेनो, कुबिलास, बनार्ड, जेंगिनी और डेविड बेकम तो बाद वर्ल्ड कप दे विच 2 फ्री किक गोल करने वाले प्लेयर जिहड़े हैगे आ उह मैसी भी बन गए है। तो दस दे इस वर्ल्ड कप दे विच मैसी हाले तक कुल मिला के टोटल 6 गोल कर चुके, तो गोल्डन बूट की रेस दे विच उह सब तो अगे है। उन्हां तों बाद एम्बेपे, विनीसियस जूनियर और एयरलिंग हॉलैंड ने 2-2 गोल आगे है। इस तो अलावा मैसी ने अपना वर्ल्ड कप करियर का 19वां गोल जिहड़ा सीगा वह भी दागिया हैगा इस मैच के विच। ते इस तो अलावा मैंस वर्ल्ड कप इतिहास के विच सब तो ज़्यादा गोल करन दे रिकॉर्ड नूं उन्होंने होर भी ज़्यादा बेहतरीन कर लिया हैगा। तो अगर गल करिए कोलंबिया तो पुर्तगाल के मुकाबले की, जिहड़ा कि 71वां मैच सीगा उस दे विच पुर्तगाल ते कोलंबिया जिहड़े सी दोनों ने ड्रॉ खेलिया। जो ड्रॉ सेगा गोललैस ड्रॉ रहा, तो दोनों टीमों ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किए, लेकिन 36 प्रयास करन तो बाद भी कोई भी टीम जी है वो गोल नहीं कर पाए। डियोगो कोस्टा नू सुपीरियर प्लेयर ऑफ द मैच जरा इस मैच वास्ते चुनिया गया। हालांकि ग्रुप के दे विच पुर्तगाल ने अपनी जी क्वालिफिकेशन है कि सुपर 32 वास्ते सेकंड पोजीशन पर रेंदे हुए कर ली गई। कोलंबिया इस ग्रुप दे विच 2 मैच जीत के टॉप ते रहके 7 पॉइंट, पुर्तगाल दे 5 पॉइंट, ते डीआर कांगो दे 4 पॉइंट दे नाल उन्होंने क्वालीफाई कर लिया। हालांकि कांगो ने एक बहुत वड्डा उल्टफेर करते हुए उज़्बेकिस्तान नूं 3-1 तो हरा के अपनी जी पोजीशन हैगी है वो कन्फर्म की है। सो फीफा वर्ल्ड कप इस टाइम तो भाई बहुत ज़्यादा हाइप ते चला गया है, अज तो नॉकआउट शुरू हो जाएंगे। सो तुसीं कि टीम नूं सपोर्ट कर रहे हो, पुर्तगाल तो अर्जेंटीना नूं तो सपोर्ट हैगी मैंने पता है। टॉप 32 में जो तुम्हारी कि फेवरेट टीम है तो सू दस सकते हैं 9855101027 दो गल बात इसी तरीके स्पोर्ट्स संडे में चलते रहेंगे। तो अगला ट्रैक लैके मैं जुड़ रहा, इंजॉय करो प्यारा जो ट्रैक।

अगर बारिश ने खलल बनाए बिना ए मैच खत्म होन दिता तो इंडिया वास्ते इस टाइम चैलेंजेस जड़े है वो काफ़ी ज़्यादा है। इंडियन टीम विद अ न्यू कैप्टन इन टी ट्वेंटी श्रेयस अय्यर और विद अ न्यू टीम आफ्टर विनिंग अ वर्ल्ड कप 2025 ते कोशिश कर रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और 2026 का टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जितने तो बाद हूँ इंडिया की जी एफर्ट से वो आया थे कि भाई आप एक बार वापस डोमीनेंसी जी वो रीस्टार्ट करेंगे। लेकिन नवे फेज के श्रेयस अय्यर की कप्तानी आयरलैंड तो पहला मैच गवाने तो बाद अज दूजे मैच में भी इंडिया की हालत जी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल के है। तो इस टाइम मैच जरा है वो बारिश के कारण चौथी बारी रोकया गया। लेकिन अगर मैच दोबारा रीस्टार्ट नहीं हो पाता तो भी इंडिया जरा है वो डीएलएस जो सिस्टम है वो मुताबिक भी मैच लगभग लगभग गवा चुकिया हैगा। तो आयरलैंड ने दूसरे टी ट्वेंटी भारत के भारत को 155 रन का जो टारगेट है वो दिता। टीम ने हैरी टैक्टर के अर्धशतक की बदौलत जो 53 रन की जी पारी है वो खेली उन्होंने 20 ओवर 154 रन बनाए। तो अगर इंडिया की पोजिशन की इस टाइम गल करिए भारत ने 8 ओवर 4 विकेट गवा के 54 रन बना ले है। तो जिदा मैं दसिया मैच जो है वो बारिश करके रुकया। लेकिन जय मुंद्रा ने संजू सैमसन अभिषेक शर्मा दोनों 0 से आउट करके इंडियन इनिंग्स की एक डेडली इनिंग्स शुरुआत जी से की हैगी है। श्रेयस अय्यर भी 10 रन बना के आउट हो गए। ईशान किशन अनफॉर्चुनेट रन आउट जोड़े है वो होए है। तो प्रिंस यादव ने इस मैच के 3 विकेट जरूर लेते। लेकिन वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू जरा वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपैक्टेड से लेकिन हो नहीं सकया। लेकिन अगर इस टाइम आप गल करिए कि डीएलएस के मुताबिक तो इंडिया 15 रन हले भी पिछे है। सो रीस्टार्ट मैच होंदा है तो फिर देखते हैं इंडिया किस सिचुएशन में पहुंचती है। लेकिन की मैच सिचुएशन दे विच इंडिया तो एज अ डोमीनेंसी दे नाल आप सीरीज जितना चाहते थे लेकिन इस टाइम इंडिया वास्ते सीरीज जितना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सो इस दिन ही मैंने स्पोर्टी संडे जो है वो समेटने की इजाजत दो क्योंकि वक्त जो है मैं इजाजत नहीं दे रहा कि मैं तो होर स्पोर्ट्स के अपडेट्स की गल कर सकता।

प्रोग्राम चल रहा है दिल चाहता है अगली फरमाइश चढ़ी आई है वो आई है जी नरगोड़ा छत्तीसगढ़ तो फरमाइश करने वाले ने महाराज कीर्तनपुरी स्वामी लक्ष्मण देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी ने लिखा माई रेडियो माई लाइफ क्या बात है जी। इन्होंने लिखा इन्होंने फरमाइश की तो फिल्म कभी कभी दे गीत तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखे। इन्होंने लिखा नाल सपरे नमस्कार जी आप कैसे हैं जी बहुत वधिया जी थोड़ा मैसेज पढ़ के होर भी वधिया हो गया। सो इन्होंने फरमाइश के नाल मैं कुछ एक नाम जड़े है जोड़ना चाहूंगा गुरमीत सिंह नीता साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो इस तो अलावा साढ़े को आए है जी नाईवाला जिला हनुमानगढ़ जिला तो राजस्थान तो वेद मिड्डा और अलका मिड्डा जी इन्होंने मैसेज एक बार पढ़ चुके हैं दोबारा आ गया तो दोबारा पढ़ता ऐसा। इस तो अलावा साढ़े को मैसेज आया है जी चक 15 पीएस जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो सरबजीत सिंह चौसन सरबजीत कौर गुरमन सिंह मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया तो आदर्श पाल सिंह वैंकूवर कनाडा तो रॉबन सिंह चौनसन। सो ए सब दे नाम सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रेनबो जलंधर परिवार का जो आप हमारे मैसेज को इतना मान सम्मान देते हैं जो आप सभी होस्ट का तह दिल से धन्यवाद जी लो जो बिल्कुल जी तुम एडे प्यार मैसेज करते हो तो असं पूरी कोशिश करते हैं कि असं थोड़े मैसेजेस तह दिल तो अपना सकी कुछ उन्होंने रिकार्ड से रहेगा रख सके इस प्यार असी इन्ना की तसमेट के रख सकते हैं क्या। इस तरह पहाड़गंज मुल्तानी टांडा तो अनिल मोहन उषा मोहन टिलू नायक और मधु नायक जी करणवीर हाउस पायू पुंचो कैंचियां बठिंडा पंजाब तो प्रेम सिंह जोड़ा मनजीत कौर जोड़ा करणवीर करण दपिंदर वरिंदर कुलदीप सिमु एकम दभम दमन ते अभिजोत ने लिखा किसी भी गीत दे विच जिहड़ा है वो शामिल किया जाए लो जी शामिल कर रहे हैं। इस तो अलावा साढ़े को आया है जी जलालाबाद वैस तो सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा जी नाल मैं जोड़ रहा नाम जी साढ़े को गांव नथाना पंजाब तो हरजिंदर शुंदा जसवीर जसी सीता और गीता आपका हर पल खुशियों भरा रहे प्रसारक जी को प्यार भरे नमस्कार जी सारे का ही प्यार भरा खुशियां भरा नमस्कार मेरे वालों भी ते नाल आए गांव फरास जिला हिसार तो राजकुमार डोडी प्रमोद कुमार डोडी ते पुष्पेंद्र कुमार डोडी किसी भी गीत विच शामिल करन लिए क्या हैगा नाल हैगा जी सरकुल मजनू का टीला तो कमल वालूजा मधु आहूजा सागर वालूजा और सतना एमपी तो उमंग मलिक आकांक्षा

ग्वालियर जिला फाजिल्का तो प्यार प्रिय नमस्कार भेजिए विनोद काटपाल, प्रवीण काटपाल, हनी काटपाल, दीक्षा काटपाल और जन्नत काटपाल जी ने लिखा जी किसी भी गीत शामिल करो। कनोरा मोहला पठियारा तो मुकेश बता, नीलम बता, नितिन पलक, करण गीतो ने हारिका, हार्दिक और वंश बता जी का मैसेज आया है। नाल आया जी साढ़े को उत्तम नगर दिल्ली तो कमला रानी बोधराज खोरवाल, भानु खोरवाल और गीतिका खोरवाल का नाल में लास्ट नाम जो इस प्रमाइश भी जुड़न जा रहा है जनकपुरी सहारनपुर तो जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो लिखा किसी भी गीत में शामिल कर लेना, आपका तहे दिल से शुक्रिया जी। लो जी तुसी मैसेज भेज दो, बहुत बढ़िया लगता है, सारे ने मैसेजेस पढ़ के बहुत सोहना लगता है, फरमाइशा पढ़ के बहुत सोहना लगता है। तो मैं कोशिश करता कि सारे अपने जिन्हें फरमाइश करता है उन्होंने इस प्रोग्राम शामिल जरूर करना। तो अपनी फरमाइशा 9855100207 तक अपने दोस्त चंदन आदि सचिन नाम शेयर कर दो, मैं इसी तरीके जुड़े रहूंगा। तो अगली फरमाइश लैके फिल्म कभी कभी तो लता इन किशोर की आवाज़ के तेरे चेहरे से नजर नहीं आती।

बिल्कुल जी, तुम्हारे मैसेजेस से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। फरमाइश है इसके से नोगे रह के चल दे। अगली फरमाइश है जी करणवीर सिंह पॉल तो पूरा पॉल परिवार सराबा नगर जलंधर तो फिल्म मेरा साया का गीत छुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में दी फरमाइश चढ़ी है गया। वो कितनी तो मैं इस फरमाइश को लेके आ रहा। इस फरमाइश के नाम जोड़ रहे हैं जी ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्स हरिद्वार। तो इस तो अलावा साढ़े नाल जुड़े है जी निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, इन्होंने धनौरी तेलीवाल तो लिखा जी किसी भी गीत दे बेच जिहड़ी साड़ी फरमाइश है वो शामिल करो। लो जी बिल्कुल कर रहे हैं। तो इस तो अलावा साढ़े को जनकपुरी सहारनपुर तो जॉन डिकेस्टो रोजी पर्ल ते विलियम दी मैसेज जड़ा हैगा वो आया हैगा। ते नाल मैसेज आया है कि साडे कोल ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद तो श्री सुधाकर राजा जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजा जाधव, कुमार संचित वायल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्व देशमुख और सानवी ते हर्षता देशमुख जी का मैसेज। ते एक लंबा जहा मैसेज आया इन्होंने लिखा है, मैं तुम्हें अगली बार पढ़ के सुनाना है। पिंड बड़िंगखेड़ा जलंधर तो इस तरह पिंड बड़िंगखेड़ा तो पोला सिंह सिद्धूपुरा सिंह गहलोत राजा बड़िंग अते पिंड बजिमपुरा पोमा तो बलजीत सिंह जी का जरा मैसेज है वह आया है। सुखवीर सिंह, कोमलप्रीत कौर, रोशनप्रीत सिंह पिंड छाजरी जिला संगरूर तो किसी भी गीत की फरमाइश चली हैगी की है। गाँव कमंडिया सूरतगढ़ जगदीश टुकिया, प्रेमीला टकिया, ज्योति शिवम, सरिता सचिन, अमन तमन्ना, साइना विष्णु, दोहती ईवा धारनिया, इन्हां दी जिहड़ी फरमाइश हैगी है वो आई है। ते इस तो अलावा आया हैगा जी ए फरमाइश तो चलो मिला जुला लैके मैं तुहाडे नाल चल रहा हैगा। ते तुसीं अपनी फरमाइशां 9855102101027 ते मैनूं शेयर कर सकदे रात 10 बजे तक। ते जद तक तुहाडी फरमाइशां आंदियां हैगियां आशा भोसले दी आवाज़ दे विच अगला ट्रैक

झुमका गिरा बरेली के बाजार में, लेकिन अपन चाक भी लाएंगे क्योंकि डे प्यारे की फरमाइश ने से पूरा करता है। अगली फरमाइश लेके आ गए हैं जी। अगली फरमाइश है संदीप मकड़, ज्योति मकड़, मन्नत मकड़, भरत मकड़, पिंगा वाला चौंक और आया जलंधर। तो इन्होंने कीते जी फिल्म यस बॉस दे गीत चांद तारे तोड़ लाओ लो जी। बिल्कुल मैं इस फरमाइश में लेके जुड़ रहा हूं। इस तो अलावा साडे कोल एक मैसेज आया है जी। आ मैसेज आया है साडे कोल यशमान दिमान, श्री कृष्ण श्रीमती कृष्णा दिमान, तो दिमान फैमिली मिर्जापुर कुरुक्षेत्र। तो इन्होंने बड़ी सोनी गाल लिखी है कि जिस स्थान पर सांप रहता हो नौकर आगे बोलता और पत्नी कहना ना मानती हो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। ना लिखे उदास हूं पर तुमसे नाराज नहीं, तेरे दिल में हूं पर तेरे पास नहीं। ना लिखो गाल लिख के बजी तो तुमसे दूर रह के प्यार क्या है, हमने जाना प्यार किया है। इन्होंने फरमाइश जी हैगी कीती हैगी। तो नाल लिखे ने भेजा है कि सचिन जी नमस्कार, क्या हाल चाल है, गर्मी बहुत है, सभी श्रोता भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि ठंडी चीजों का सेवन करें जिसमें पानी की अधिकता हो, नींबू लगती नहीं आदि। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही गल बोली जी। गर्मी जी हैगी बहुत ज्यादा वध रही हैगी। इस सब अपना ख्याल रखने की जी कोशिश है तुम जरूर करो। तो तिमान जी बहुत ही प्यारा मैसेज रहेगा तुम्हें लिख के भेजा है। सो मैं थोड़ा नाम इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। पदमपुर जिला श्री रंगानगर राजस्थान। तो मैसेज आया मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा दादा इसी फरमाइश के जोड़ रहे हैं जी। बड़े खेड़ा तो पंजाब तो मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा जी नाल हैगे जी। साडे कोल पप्पू चोपड़ा एंड कविता चोपड़ा सिल्वर कुंज एक लुधियाना तो नाल आया मेरठ तो साडे को मैसेज दिग्दर्शन और कविता गौड़ा जी का मैसेज आया हैगा। इस तो अलावा साडे नाल जुड़े हैगे है जी गोविंदपुरी सीकर राजस्थान तो दातर सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत नाल हैगे है जी। साडे कोल बिपिन आनंद ते परवीन आनंद नाल हैगे, राहुल आनंद, मेघा आनंद नेड़े कामंडी चौंक जलंधर तो। इस तो अलावा इसी मैसेज के सुरेंद्र कुमार सौबती, नीतू सौबती, साहिल सौबती, नेहा सौबती, ऋतिक सौबती, राहुल आनंद, मेघा आनंद, सारा सौबती परिवार शाहकोट जिला जलंधर तो मैसेज रहेगा, मैं शामिल कर रहे हैं। इस तो अलावा जी एमिली झुली फरमाइश के बीच एक होर जो नाम है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप सिंह, अमनदीप नालकालका तो शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज लिखे हसीनों की दुनिया खुद गर्ज है, इतना कहना मेरा फर्ज है, आधा वर्ष है। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गल जी है वो लिखी है। तुम अपने दिल की गल इसी तरीके नाम है ना 9855101027 शेयर करते रहो। फरमाइशों का सिलसिला चलेगा रात 10 बजे तक थोड़े दोस्त इंद्रनाथ आर जे सचिन नाल। अगली फरमाइश अभिषेक भट्टाचार्य की आवाज़ के यस बॉस मूवी 1997 आई तो चांद तारे तोड़ लाऊं।

जी हाँ, बस इतना सा ख्वाब है। सो मैनीफेस्टेशन की जी पावर है उसनों जरूर तुसी यूज किया होना कदी ना कदी जिंदगी दे विच। कहिंदे ना कदी कदी ना कदी कुछ दिल तो कुछ मांग लो ना, वह जिंदगी दे किसी ना किसी तौर ते तुहानू वापस जरूर मिल जांदा। नेचर दी अपनी पावर हैगी आ। सो इस फरमाइश दे किसे नू अगे लैके चलदे। अगली फरमाइश जिहड़ी आई हैगी वह हैगी जी साडे कोल दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान तो भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर काजल बड़वाल, लखवीर राणो, कृष्णा, श्रीमती छिंदो।

प्रवीण शीतल नवीन रंगीला निशान अनमोल प्यारे बेटे चटकू मटकू लिखा जी कृपया आप हमारी फरमाइश जरूर जरूर पेश करना जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी खुशी तुझे बेटे प्यार फरमाइश करोगे तो किस तरीके मनाया कर सकते हो फरमाइश की तेना ने फिल्म बाबुल द गीत मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का गायक तलत महमूद और शमशाद बेगम जी थोड़ी इस फरमाइश को लैके मैं जुड़ रहा हाँ थोड़े नाल ते इस दे नाल ही फरमाइशा दे किस्से नू अगे वधा रहा है ते अगे वधांदे होए कुछ एक नाम जिहड़े हैगे आ मैं इस प्रोग्राम दे विच जरूर ऐड करना चाहूंगा या आपां वेट कर लिए नहीं नहीं मैनूं लगदा है कि आपां नूं एक अद्धा नाम होर जरूर ऐड करना गोविंदपुर सीकर राजा सां तो दाता सिंह शेखावत संगीता कंवर तुषार सिंह रिंकी ते शेखावत दा मैसेज जिहड़ा हैगा ओह आया सीगा साडे कोल नाल जी इस तों इलावा साडे कोल मैसेज आया हैगा जी बप्पू चोपड़ा जी कविता चोपड़ा जी तो सिल्वर कुंज लुधियाना तो मैसेज किया है वड़िंगखेड़ा पिंड वड़िंगखेड़ा पंजाब तो मिंटू टॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा जी दोबारा मैसेज आया साडे कोल ते इन्हां दी मिली जुली फरमाइश तो मैं अगला ट्रैक जिहड़ा हैगा वो लैके आ रहा है तो तुसीं अपनी फरमाइश का किसी तरीके नाल मेरे नाल दस बजे तक शेयर करते रहो 9855101027 2 7 दे उत्ते

प्रोग्राम चल रहा है जी दिल चाहता है ते अगली फरमाइश जी मैं लेके आ गया जी फरमाइश आई है साढ़े को सोनू रवि राज गुलशन लकी बलदेव मगर जलंधर तो मूवी चार बार से गीत ना जाने कहाँ से आई है ये लड़की लो जी मैं पेश कर रहा हूँ इस ट्रैक नूं ते इस ट्रैक दे नाल कुछ एक नाम जिहड़े हैगे मैं जरूर जोड़ना चाहूँगा ते इन्हां विचों एक हैगा जी नाम साढ़े को सुरेंद्र कुमार सोपती नीतू सोपती साहिल सोपती नेहा सोपती रितिक सोपती राहुल आनंद नेका आनंद सारा सोपती पर शाहकोट जिला जलंधर तो इस तो अलावा साढ़े को नाम जुड़े हैं जी पिंड कुड़ियाणा जिला फजिलका तो मलकी सिंह मनजीत

सोच इस प्रोग्राम के आखिर फरमाइश लेके मैं तोड़ना जुड़ गया। फरमाइश है कि जी फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ लगी तेरे प्यार धरास नहीं चखना मखना। फरमाइश करने वाले राजस्थान तो नरेंद्र सुथार मनोज सुथार ते इन्हों की फरमाइश लैके मैं कुछ एक आखिरी नाम जोड़े है जोड़ रहे इस प्रोग्राम में दिनेश होशियारपुर अंबुआ वाला इस तो अलावा इन्होंने पुछटाला हरियाणा तो दारा पंडित संजय शर्मा प्रियंका शर्मा तो इस अलावा सर को आखिरी नाम जो है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश तो यशमीत यशु सौम्या सिंह अमरल सिंह किसी भी गीत शामिल करने लिए क्या है तो इस ही हूँ मैं दिल चाहता है समेटा दे जा सकते हो दिल चाहता है उस पर मिलता जी थोड़ा शामी गजल के दोस्त तीन दिन आ दिन आर जे सचिन नाल।

शामी गजल के इस महफिल में मेरी तरफ से आप सबका स्वागत है। कई रिश्ते जिंदगी में ऐसे होते हैं जो खुदा नहीं बनाता, उन्हें हम खुद बनाते हैं और इन रिश्तों को कहते हैं दोस्ती का रिश्ता। जी हाँ, जिसे ना खून का रिश्ता चाहिए ना कोई शर्त, बस अगर इस रिश्ते को कुछ चाहिए तो वो है सिर्फ और सिर्फ सच्चा दिल। दोस्ती वो नहीं जो हर रोज मिले, दोस्ती वो है जो कभी ना हिले, दूर रहकर भी जो साथ निभाए, वही दोस्त जिंदगी का सबसे बड़ा साया कहलाए। शामी गजल के इस महफिल में कुछ कहानियां, कुछ शायरी और कुछ गजलें लेकर आधे घंटे तक मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ। आज की ये प्यारी कहानी है उन दो दोस्तों की जो 15 साल बाद एक रेलवे स्टेशन पर मिल रहे थे। पहली बार तो दोनों ने एक दूसरे को पहचाना ही नहीं, लेकिन फिर आंखों ही आंखों में लगा कि ये चेहरा, ये आंखें कहीं तो देखी हैं। और फिर जैसे ही एक दूसरे को पहचाना, वही पुरानी मुस्कान लौट आई। कुछ ही मिनटों में ऐसा लगा मानो सालों की दूरी पल भर में खत्म हो गई हो। दोनों पास की एक चाय की दुकान पर बैठ गए। चाय की चुस्कियों के साथ स्कूल की वो शरारतें, टीचर्स की डांट और खेल का मैदान और वो बेफिक्र दिन याद करने लगे। बातों बातों में एक दोस्त थोड़ा सा भावुक हो गया और बोला, यार तुम्हें याद है 10वीं की परीक्षा से पहले मेरे घर की हालत बहुत खराब थी, फीस भरने तक के पैसे नहीं थे, मुझे लग रहा था कि शायद इस साल तो मैं परीक्षा दे ही नहीं पाऊंगा। दूसरा दोस्त मुस्कुराया और बोला, हाँ याद है, अगले दिन किसी ने चुपचाप ऑफिस में पैसे जमा करवा दिए थे,

पहले दोस्त ने उन उम्मीद भरी आंखों से उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे उस दिन समझ आ गया था कि वो तुम ही थे, लेकिन मैंने कभी तुमसे पूछा नहीं क्योंकि मैं तुम्हारी भावना की इज्जत करता हूँ। दूसरे दोस्त ने भी हल्की सी हंसी के साथ कहा, और मैंने भी कभी किसी को नहीं बताया क्योंकि दोस्ती में मदद का हिसाब नहीं रखा जाता। अगर उस दिन तुम्हारी पढ़ाई रुक जाती तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहता। कुछ पल दोनों बिना कुछ बोले बैठे रहे। उनकी आंखों में खुशी भी थी और अपनापन भी। इतने सालों में उनका रिश्ता वैसा ही था, बिना किसी दिखावे का, बिना किसी शिकायत का। जी हाँ दोस्तों, सच्ची दोस्ती वो नहीं जो हर समय दिखाई दे, बल्कि वो है जो सही समय पर बिना शोर किए आपका हाथ थाम ले। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। दोस्ती का ये रिश्ता हम सब के लिए हमेशा से ही खास रहा है।

एक लड़का कई दिनों से बहुत परेशान था। नौकरी का तनाव, घर की जिम्मेदारियां और लगातार मिल रही असफलताओं ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। दिन भर लोगों के बीच रहने के बावजूद उसे लगता था कि जैसे वो बिल्कुल अकेला है। उस रात घड़ी में 2 बजे थे, काफी देर

तक सोचने के बाद उसने अपने सबसे पुराने दोस्त का नंबर मिलाया। मन में डर भी था कि इतनी रात को फोन करना ठीक रहेगा या नहीं। तो उसने पहले ही घंटी पे फोन उठाया और नींद भरी आवाज में पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? कुछ पल तक चुप्पी रही, फिर उसने धीरे से कहा, कुछ खास नहीं, बस मन बहुत भारी था, लगा किसी अपने से बात कर लूं। उधर से जवाब आया, तुमने बिल्कुल सही किया, दोस्त इसीलिए होते हैं कि जब दुनिया सो रही हो तब भी तुम्हारी बात सुन सके। दोनों करीब एक घंटे तक बातें करते रहे। उन्होंने पुरानी यादें ताजा की, कॉलेज के दिनों की मजेदार घटनाएं याद करी और जिंदगी की परेशानियों पर खुलकर बात की। फोन रखने से पहले दोस्त ने कहा, समस्याएं अभी भी है लेकिन याद रखना उन्हें अकेले मत झेलना, जब भी लगे कि मुश्किल हो रहा है बस एक फोन कर देना। फोन काटने के बाद पहली बार कई दिनों में उस लड़के के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। उसकी समस्याएं तुरंत खत्म नहीं हुई लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि आज वो अकेला नहीं है। दोस्त हमेशा आपकी मुश्किलें खत्म नहीं कर सकते लेकिन वे इतना जरूर कर सकते हैं कि आपको कभी अकेला महसूस ना होना दे। रिश्ते तो बहुत मिलेंगे राहों में मगर दोस्ती जैसा खजाना कम मिलेगा। जो दिल से साथ निभा जाए हर सफर में ऐसा दोस्त हर किसी को कहाँ मिलेगा। शामी गजल के इस महफिल में अगली गजल जगदीत की आवाज में।

स्कूल में एक लड़का था जो हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता था। पढ़ाई में औसत लेकिन दिल का बहुत अच्छा। क्लास के कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे लेकिन एक लड़का हमेशा उसके साथ बैठता था। एक दिन परीक्षा के नतीजे आए, आखिरी बेंच वाला दोस्त फेल हो गया। उसने स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया। अगले दिन जब वह अपना बैग लेकर स्कूल आया तो उसका दोस्त उसके पास बैठ गया और बोला, अगर तू चला गया तो मैं भी इस बेंच पर अकेला रह जाऊंगा। उसने कहा, लेकिन मैं तो फेल हो गया हूं। दोस्त मुस्कुराया, मार्कशीट इंसान की काबिलियत नहीं बताती, मुझे तेरी मेहनत पर भरोसा है। एक साल और मेहनत करेंगे फिर साथ में पास होंगे। उसे एक बात ने उसका हौसला वापस लौटा दिया। उसने स्कूल नहीं छोड़ा। अगले साल दोनों ने परीक्षा पास की। करीब 10 साल बाद वही लड़का एक सफल इंजीनियर बन गया। जब उससे उसके सफलता का राज पूछा गया तो उसने कहा, मेरी जिंदगी उस दिन बदल गई थी जब किसी ने मेरे अंकों को नहीं मुझ पर भरोसा किया था। दोस्ती का रिश्ता बड़ा अनमोल होता है। हर मुश्किलों में यही सबसे मजबूत ढाल होता है। जो घुर कर भी उठना सिखा दे वही सच्चा दोस्त होता है। सच्चा दोस्त वही होता है जो तब भी आप पर विश्वास बनाकर खड़ा रहे जब आपको खुद पर भरोसा ना हो। शामी गजल के इस महफिल में अगली आवाज पंकज उदास की।

सुहाना गजल के इस महफिल को आप समेटने की इजाजत दीजिए। इस गजल के उस पार मिलते हैं, एक प्यार का नगमा है मैं। तब तक सुनते रहिए अपने दोस्त दिन दिन आरजे सचिन के साथ।